मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:49 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, पहली सभा के कार्यक्रमों की शुरुआत में आइए सुनते हैं चिंतन।
1: व्याकरण बोलता है कि नैतिकता महज एक भाववाचक संज्ञा है, किंतु कवि इसे जीवन की सबसे बड़ी मूल्यवत्ता बताता है। संसार के सारे धर्मों के संस्थापक एवं व्याख्याकार नैतिकता के पक्ष में ही अपने समस्त उपदेशों को केंद्रित रखते रहे हैं। मोहम्मद साहब ने जिस ईमान को महत्व दिया वो अंततः नैतिकता ही है। ईसा ने जिस सत्य पर बल दिया वो भी नैतिकता ही है। वेदों की संपूर्ण ऋतस्विता का मूलाधार भी केवल नैतिकता है। संस्कृति एवं सभ्यता का मापदंड है नैतिकता। जो समाज नैतिकता पर जितना अधिक बल देता है वो उसी सीमा तक सुसंस्कृत एवं सभ्य कहलाता है। व्यक्ति की सामाजिकता भी कुल मिलाकर नैतिकता ही है। नैतिकता देना जानती है, इसीलिए यशस्विता पाती है। सूरज अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने की नैतिकता के कारण ही यशस्वी है। आग की यशस्विता का कारण भी ऊष्मा बांटने की नैतिकता ही है। चंद्रमा भी अपनी शीतल रश्मियता से सबको लाभान्वित करने की नैतिकता दिखाने से यशस्वी है। सरिताएं अपना जल स्वयं नहीं पीती, ये उनकी नैतिकता है। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ये भी उनकी नैतिकता है। स्वार्थ की सीमा लांघकर परमार्थ या परोपकार की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा का ही दूसरा नाम है नैतिकता। नैतिकता धर्म है और अनैतिकता अधर्म। यही कारण है कि संसार के प्रायः हर सभ्य समाज में नैतिक कार्यों को सत्कर्म और अनैतिक कार्यों को दुष्कर्म कहा जाता है। पुण्य और पाप भी नैतिकता और अनैतिकता के ही क्रमबद्ध पर्याय हैं। नैतिकता पुण्य पैदा करती है और अनैतिकता से पाप का जन्म होता है। हत्या अनैतिकता है और रक्षा नैतिकता। लूट अनैतिकता और दान नैतिकता। अनैतिकता अपहरण की प्रेरणा देती है, किंतु नैतिकता त्याग की भाषा सिखलाती है। अनैतिकता एक

0: विद्वान राजपुरुष को भी रावण बना देती है, किंतु नैतिक आचरण वाला व्यक्ति वनवासी होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर में जो अंतर है वही अनैतिकता और नैतिकता में भी है। नैतिकता सदाचार है और अनैतिकता दुराचार। नैतिकता ही वो सद्गुण है जो मनुष्य को पशु बनने से बचाती है। नैतिकता विवेक पैदा करती है, अतः मनुष्य को अविवेकी बनने से रोकती है। आदमी जब कभी न्याय के मार्ग पर स्खलित होने लगता है तो नैतिकता उसे रोकती है। समाज के संदर्भ में नैतिकता ही व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक नागरिक को राष्ट्रवादी बनाती है। ये नैतिकता ही है कि एक सर्वाधिकारी राजा को भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माक्षित दुख भाग भवेद का आदर्श उपदेश देती है। नैतिकता वो पतवार है जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना की नाव को खेती है। अनैतिकता जहां सिर्फ लेती है वहां नैतिकता सिर्फ देती है। आम खाकर गुठली को जमीन में बो देना नैतिकता है, ताकि लाखों आम बांटने हेतु एक नया पेड़ पैदा हो सके। नैतिकता धर्म तंत्र को, मनुस्मृति और लोकतंत्र को संविधान देती है। नास्तिकों को तर्क और आस्तिकों को श्रद्धा देती है नैतिकता। नैतिकता कहती है कि किसी राजा को लुटेरा और रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। नैतिकता अधिकार पाने वालों को कर्तव्य की प्रेरणा देती है। छात्रों को पढ़ने तथा शिक्षकों को पढ़ाने के लिए मजबूर करती है नैतिकता। पशुता को मनुष्यता की परिधि से दूर करती है नैतिकता।
1: कार्यक्रम चिंतन के बाद आकाशवाणी पटना की अगली प्रस्तुति है कृषि सूचनाएं। विषय है परवल की फसल की देखभाल। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। परवल प्रमुख सब्जी की फसल है। इसकी खेती जब आप करते हैं तो इससे आमदनी आपको बहुत अच्छी होती है। इसलिए यदि भूमि परवल की खेती के योग्य है तो आपको परवल की खेती करनी चाहिए। परवल के उन्नत प्रभेद में राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, FP1, FP3, स्वर्णरेखा, सोनपुरी, स्वर्ण अलौकिक, नरेंद्र परवल 260 प्रमुख हैं। जहाँ तक इसको बोने का समय है तो आवश्यकता अनुसार आप इसकी बुआई करते हैं। इस समय जो है परवल की जो फसल आपके खेत में है उसकी देखभाल जो है वो आवश्यक है, क्योंकि आपने जो नवंबर और दिसंबर में जिस परवल की बुआई की है वो परवल की फसल जो है इस समय आपके खेत में है और कुछ ही महीनों में उसमें फल आएंगे। तो ध्यान ये देना है कि यदि आपने बुआई के समय गोबर की खाद का प्रयोग कम किया है तो इस समय पौधे की जड़ों के नज़दीक सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर दे दें। नीम या अंडी की खल्ली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 250 ग्राम प्रति थाला यानी कि प्रति पौधे के नज़दीक हो सकता है। 100 ग्राम आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास 25 ग्राम, थाइमेट 10 से 15 ग्राम आप दे सकते हैं। फरवरी के महीने में 20 ग्राम जो है यूरिया प्रति थाला व्यवहार करें। मार्च के महीने में फिर 20 ग्राम यूरिया, 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक थल्ला प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती जाती है खेत में सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी देने की ज़रूरत होती है, तो आप समय पर पानी जो है देते रहें। जब भी खेत में नमी की कमी हो तो आप पानी दें। परवल के लतों में पौधों में एक समस्या ये होती है कि नर और मादा जो है पुष्प अलग अलग पौधे

0: ऊपर लगते हैं, तो मादा पुष्प वाले जो लते हैं उनकी संख्या या बढ़ावें, नर वाले थोड़े कम कर दें, क्योंकि फल मादा वाले में ही आएंगे, मादा लतर वाले में ही आएंगे। यदि कोई समस्या हो रही है कीड़ा लगने की, खास करके टिड्डे कीड़ा, कीड़ा जो है टिड्डा, वो काफ़ी नुकसान कर सकता है, पत्तियों को काट सकता है, आपके तनों को काट सकता है, या दीमक, कजरा पिल्लू, इस तरह के कीड़े भी आपकी फसलों को नुकसान कर सकते हैं, खास करके परवल की फसल को, तो इसके अनुसार आपको उपाय करना है। नीम की खल्ली प्रति थल्ला यदि आप प्रयोग किए हैं तब तो ये नहीं लगेगा, या बाद में क्लोरपाइरीफास दवा का प्रयोग आपको करना होगा। उसके बाद रोगों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पाउडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णिल आसिता रोग जो है वो इसमें लग सकता है। तो वैसी स्थिति में आप कुछ दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जब रोग हो जाए उस समय आप दवाओं का प्रयोग करें, उससे बढ़िया है कि पहले से ही आप लतों को उपचारित करके बो में खेत में खरपतवार नहीं रहें, इसलिए निकाई गुड़ाई करते रहें, और फसल की तुड़ाई भी है जो है वो समय पर करें, क्योंकि तुड़ाई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब फल तैयार होते हैं तो कितने दिनों के बाद आपको उसकी तुड़ाई करनी है, क्योंकि नरम जो फल या छोटे होते हैं, परिपक्व होते हैं, उनकी कीमत जो है बाज़ार में अच्छी लगती है, और जो कड़े हो जाते हैं फल उनकी कीमत जो है वो कम लगती है। गर्मा मौसम में पानी की समस्या, खरपतवारों की समस्या ज़्यादा होती है, और जब तेज धूप हो जाए तो ये काम और करना पड़ता है। नदी के किनारे या बलुआही जमीन पर जब आप परवल की खेती किए हैं तो उसके नीचे घास पात या कुछ जो है अरहर के फसल के अवशेष होते हैं वे रख दिए जाते हैं, ताकि लतें जो हैं सीधे बालू के संपर्क में नहीं आवें, जमीन के संपर्क में नहीं आवें, अन्यथा गर्मी के कारण नुकसान होता है। तो ये कार्य भी करना समय समय पर आवश्यक होता है। बरसात का मौसम आता है या
1: कृषि सूचनाएं, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं

0: से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले ये देश वंदना।

भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए रामचरितमानस पाठ।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

0: रामचरित मानस पाठ अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को नमस्कार। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर विकास शंकर, जो पटना के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, और हम इनसे बातें करेंगे जलने की घटनाएं और प्राथमिक उपचार। डॉक्टर साहब, जो मार्च अप्रैल का महीना होता है उसमें आमतौर पर अगलगी की समस्या हो जाती है, और आम जीवन में भी महिलाएं या कोई लोग जो आग के पास काम करते हैं वैसे लोग कभी कभी दुर्घटना में जल जाते हैं, तो हॉस्पिटल जाने के पहले या चिकित्सक के पास पहुंचने के पहले बहुत ज़्यादा नुकसान न हो जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार बताएं जिसे तत्काल लोग करें तो उनको नुकसान कम से कम हो।
2: देखिए, सबसे पहले तो है कि हमें बचाव के उपाय करने होंगे। जैसे हम लोग हीटर को अपने कंबल के अंदर लगा लेते हैं, हीटर को अपने बेड पर रख लेते हैं, और वहाँ से या फिर बहुत नज़दीक जो आग की जो बुरसियाँ होती है उसको लगा के सोते हैं, तो ये ना करें। मैंने बहुत पेशेंट के रिव्यू में जब देखा है कि जब वो जलते हैं तब पता चलता है कि वो बेड पर ही हीटर या ब्लोअर को रख के चला रहे थे, या आजकल हीटिंग जो बेड पैड आता है उसका प्रयोग करते हैं और शॉर्ट सर्किट होती है या कहीं से सर्किट लीकेज होती है और उससे आग लग जाती है। इसके अलावा जो दूसरे श्रेणियों में देखा जाता है, पूजा करते समय साड़ियों या धोती में या दुपट्टों में आग लग जाती है, तो उसमें काफ़ी सावधानी रखनी है। और अगर किसी को आग लग जाती है, चाहे वो रसोई घर में हो, पूजा में हो, या जाड़े के समय ब्लोअर से शॉर्ट सर्किट के कारण या हीटर के शॉर्ट सर्किट के कारण, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला उपचार क्या है कि आग को किसी भी मोटे कपड़े से ढककर दबा दें और आग को तुरंत बुझने दें, ताकि वो फैले नहीं, शरीर के और अंगों में नहीं फैले। दूसरा काम करें टैप वाटर, न तो गर्म पानी न तो फ्रिज का ठंडा पानी, सबसे पहले नल के जो भी टेम्परेचर हो नल का, उस पानी से जो जले हुए अंग है, चाहे वो छोटे अंग हो या बड़े अंग हो, सबसे पहले उसको आप उसे हल्के से फ्लो पे उसको धो दें, ताकि जो उसमें जो जले हुए पदार्थ सटे हुए हैं वो भी हल्के निकल जाएंगे, उसका टेम्परेचर कूल डाउन भी करेगा स्किन का और फर्दर डैमेज स्किन को नहीं करेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत फोर्स से नहीं धोना है, बहुत हल्के फ्लो से धोना है और उसको धो दें। बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि लोग जलने के बाद तरह तरह के घरेलू उपचार, और आजकल तो ये जो व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार टूथपेस्ट लगा देते हैं। कृपया यह ना करें, ये और हम लोगों के कार्य को डिफिकल्ट कर देता है। टूथपेस्ट लगाने के बाद भी उस चमड़े के साथ चिपक जाता है और उसको फिर साफ करने में हम चिकित्सकों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और एक लेयर जम जाता है जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है।

0: आप ये घरेलू उपचार ना करें, ये चिकित्सकों पर छोड़ दें, तुरंत अपने निकटतम अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, या अपने जो प्लास्टिक सर्जन है या चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, इनके पास ले जाएं, उसका समुचित इलाज शुरू हो जाएगा और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें अपने अपने मन को शांत रखें, पेशेंट को कुछ पानी पिला सकते हैं, पेशेंट को भी शांत रखें और हाइड्रेट करके रखें। कोशिश करना है कि पेशेंट को जितना हम इन्फेक्शन से बचा पाएं, हम उतना बचा पाएंगे तो पेशेंट के लिए आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ सावधानियों के बारे में बता रहे थे, तो आप हमारे सुनने वालों को, खास करके महिलाओं को या वैसे लोग जो आग के पास काम करते हैं या हीटिंग इक्विपमेंट्स के पास काम करते हैं, वो किस तरह का वस्त्र धारण करें और कैसे, किस तरह से वो उसको हैंडल करें, इसके बारे में भी जरा बता दें तो बड़ा अच्छा होगा।
0: देखिए, जैसे कि हम बहुत ढीले कपड़े पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, दुपट्टे या जो आंचल एक तरफ लटकता रहता है, धोती पहनते हैं तो उसमें ढीला रहता है, तो जब हम आग पूजा करने जा रहे हैं या आरती के बीच में हैं, तो उस समय या तो वो जो ज्वलनशील जो सामान है, जो मान लीजिए दिया है या आरती का जो आपका जो बर्तन है, उसको थोड़ा अपने से दूर रखें और हमेशा सचेत रहें कि इसमें हम उसके नज़दीक ना रहें और जलने की समस्या ना बनेगी। दूसरा है कि जब हम रसोई में अब काम कर रहे हैं और रसोई में हो सकता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, बहुत हड़बड़ी में हो रसोई में, और गलती से हमारा दुपट्टा, आंचल या कोई भी वस्त्र रंग ये आग के चपेट में आ जाता है, तो उसको तुरंत उतारने की कोशिश करें। उसमें यह न देखें कि लोग क्या कहेंगे, जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर या तो आप कोई कंबल जैसे चीज को रख के बंद कर दें और उसको तुरंत आग को बुझाने की कोशिश करें। पैनिक नहीं हो, यहाँ से वहां नहीं भागें, घर के किसी भी कमरे में, कोई भी जिसमें आप सोते हैं वहां पे कंबल रहता है, तोशक रहता है, चादर रहता है, आप उसमें जाके लिपट सकते हैं और उस आग को आप बुझाने की कोशिश करें। क्या है कि जो अंग जल गया है बस उतना ही तक जला रहे, आगे ये आग फैले नहीं। अगर आप दौड़ते रहेंगे, आप पैनिक करेंगे तो आपका आग ये और शरीर में फैलता रहेगा और आपके शरीर को ज्यादा अंगों को नुकसान करेगा। अगर 10 से 15% से नीचे हैं तो आप खतरे से बाहर हैं। याद रखिए, अगर 15% या 20% ऊपर चले जाते हैं, अंगों को जला देते हैं, आप खतरे में आ जाते हैं, आपकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। इसको मुक्ता ध्यान में रखना है।
1: तो डॉक्टर विकास शंकर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को जलने की घटना और उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचनाएं कार्यक्रम में आपने सुना जलने की घटना और प्राथमिक उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विकास शंकर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हालचाल। कार्यक्रम हालचाल के तुरंत बाद आप सुनेंगे 7:15 पर प्रादेशिक लोक संगीत प्रांतीय भाषाओं पर आधारित, कलाकार होंगे मधुकर निराले और साथी। 7:25 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार होंगे आशीष कुमार चटर्जी। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा सुबह के 9:10। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे सुबह के 10:00। अंग्रेजी वार्ता आप सुनेंगे 10:30 पर। आज का विषय है पॉजिटिव पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन इंडिया, पॉजिटिव पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया एंड लॉज फॉर इट। दस बजकर 45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। दिन के 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे बिहार का लोक संगीत, भोजपुरी लोकगीत। कलाकार होंगे टुक्कू पाठक और संत राज सिंह रागेश। सुरों का सफर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। कानून की बातें आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दोपहर 1:30 पर। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2 बजे होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दोपहर 2:30 पर।

0: सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर शाम आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का समय होगा शाम 6:30 और इसके तुरंत बाद 7 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे। जिले की हलचल आप सुनेंगे 7:47 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 7:52 पर। कलाकार होंगे हरिहरन, इनसे आज आप सुनेंगे गजल। सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम् इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणां आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन NTA इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट UG पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। NTA इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं

0: प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षाकेन्द्रज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिकजालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिकवित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 36वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थं अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है।

0: गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम की हालचाल कार्यक्रम हालचाल की शुरुआत में आइए जानते हैं कि आज के दिन का हमारे इतिहास में क्या खास है। मुगल शासक औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था और अपने पिता शाहजहां को वहीं नज़रबंद कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1658 में वर्ष 1936 में आज ही के दिन यानी 8 जून को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। वर्ष 1948 में एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की जो मुंबई से काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन तक गई थी। वर्ष 1949 में मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल का प्रसिद्ध उपन्यास 1984 पहली बार प्रकाशित हुआ था। श्रोताओं, आज विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 8 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका उद्देश्य सतत मत्स्य पालन है। इस आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्री संसाधनों के स्वास्थ्य और प्रचुरता को सुनिश्चित करने में मत्स्य पालन प्रथाओं के महत्व पर जोर देता है।

सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्के के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे।

आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है

श्रोताओ, आज 8 जून को दुनिया भर में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क ट्यूमर की गंभीरता, इसके शुरुआती लक्षणों, शीघ्र पहचान और बचाव के बारे में जागरूक करना है। इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की वर्ष 2000 में और इसे शुरू किया था जर्मनी के एक गैर लाभकारी संगठन जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने। इस वर्ष का विषय है करीबी नजरिया। यह विषय आम जनता और चिकित्सा विशेषज्ञों को ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती चेतावनी संकेतों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो रहा है, तो इस वायदे के साथ कि कल फिर से 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल के साथ हम उपस्थित होंगे। नमस्कार। कार्यक्रम हालचाल अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब सुनिए प्रादेशिक लोक संगीत। कलाकार हैं मधुकर निराले और साथी।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक लोक संगीत। कलाकार थे मधुकर निराले। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं आशीष कुमार चटर्जी। इनसे आप सुनेंगे सितार वादन, राग वसंत मुखारी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितार वादन। कलाकार थे आशीष कुमार चटर्जी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: June 8th, 1936. A voice echoed across the waves.
1: Ye Akashvani.
0: That voice became a lifeline, a storyteller, a companion, a conscience. For 89 glorious years, Akashvani, India's national broadcaster, has spoken to the soul of the nation, from east to west, from north to south, from farmers to women, from children to youth, with programs for everyone, everywhere. Akashvani has been there, informing, inspiring, uniting India. And today,
2: हमारे स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 8 बजने वाले हैं. हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए.
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है.
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
5: हर घर सूर्य घर.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल. पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ. अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए. फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा.
7: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है. आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा. आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा. हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. काश्विन नाहर, आकाशवाणी, कोलकाता.
6: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है. एक रिपोर्ट.
8: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा. इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा. अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़.
6: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य

0: शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु

0: परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
2: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक के मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस

0: हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Economic Times states Leh Old Town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: Akashwani se peshe khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिजाइलों से हमले किए हैं और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है अब खबरें तफसील से मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई नाफिज करेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जाने सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संगे मील बताया जा रहा है मगरबी बंगाल में एबीपीएमजेएवाई के निफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ्फुज़ फराहम होगा जबकि मुल्क भर में हिफ्जाने सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निजाम भी मजबूत होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं तफसील हमारे नामा निगार से
3: एनटीए की तरफ से जारी की

0: किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीक़ेकार के तहत करवाया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तहान का सेंटर वाक़ है। एनटीए ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के बारे में मालूमात उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी इम्तहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को एनटीए की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तहान दोबारा मुनक़िद कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुँच रहा है। आकाशवाणी तेज जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली जमीनों, मैंग्रोव और साहिली माहौलियाती निजाम को बहाल किया गया है। नीज नमामी गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निजाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामी गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट

0: चार वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगैनियो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकत दारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगैनियो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नितिनयाहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंग बंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बैरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बैरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजाहमत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमांड सेंटर खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहिरे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
3: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर्व ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलवियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल

0: किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीन नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्रोताओ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया गीत
8: और इंडिया रेडियो।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की ओर से राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने इस चुनाव के लिए भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीख।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवासी श्रमिक कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर मधुबनी जिले में असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। जिले के खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव में हुए इस हमले में श्री प्रसाद सुरक्षित बाहर निकल आ गए। घटना के बाद श्री प्रसाद ने कलवाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
3: कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे अनुचित डिमांड करने लग गए बोलो, और जब मंत्रीगढ़ के द्वारा उनको समझाया गया तो वहां से उनके जाने की, जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया, जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी सारा मिला है और जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है, और 2-4 महिलाएं ने आगे किया था उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है, और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है और सब पे कार्रवाई करके FIR की जाएगी पुलिस के बयान पे।
0: इधर मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि यह घटना विपक्षी दल राजद के असामाजिक और उग्र कार्यकर्ताओं की सुनियोजित साजिश का परिणाम है। पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिद्दुपुर को जोड़ने वाले 6-लेन पुल पर अगले माह से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 पर बन रहे इस पुल की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर पुल और 10 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। सचिव ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर 4,988 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुल के आधे हिस्से पर यातायात पहले से जारी है। राज्य से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में लगे डिब्बों की अगले एक सप्ताह के अंदर जांच की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन के एक स्लीपर कोच में कपलिंग टूटने की घटना के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मुख्यालय, वर्कशॉप तथा मंडल के अधिकारी अत्यधिक खराब डिब्बों वाली रेलगाड़ियों की जांच कर उन्हें हटाएंगे। साथ ही पीरियोडिक ओवरहॉलिंग करने वाले सभी वर्कशॉप का अगले एक माह में ऑडिट किया जाएगा। राज्य के 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले राशन कार्डधारी परिवारों को

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश। दक्षिण बिहार में मौसम गर्म रहेगा। और पटना के दिलीप कुमार तथा सीवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में

उनके घरों तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनाज पहुंचाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार पटना जिले के मसौढ़ी और वैशाली जिले के हाजीपुर में इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार राशन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि देगी। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग देश के विभिन्न भूभागों में हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों का प्रसारण करता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
4: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से प्री मानसून की गतिविधियों में तेजी आने के पूर्वानुमान है। इससे प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर देश में कई परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें

0: 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु
2: पटना के दिलीप कुमार और सिवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मुजफ्फरपुर के सुधांशु शेखर ने रजत पदक प्राप्त किया। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में पटना की ईशानी पाठक और मुजफ्फरपुर की नव्या गोयनका संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। 10वीं दक्षिण एशिया आत्यापात्या चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के बाद भारतीय टीम के सदस्य पटना के वैष्णवी और अरवल के दिवाकर कुमार का पटना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन राव भागवत अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे मुंगेर में आयोजित बिहार झारखंड के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में शामिल होंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में बिहार और झारखंड के 127 शिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अररिया जिले में होटलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए जांच की। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में लोहागाड़ा इस्मत टोला में छापेमारी कर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में मादक पदार्थ एस्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दानापुर रेलवे सुरक्षा बल ने पटना के मीठापुर रेल लाइन के किनारे अतिक्रमण करने के मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के फुलवारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने खगौल लक से 10,000 के जाली नोट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की विशेष खबर है, यातायात पुलिस में 35 पार उम्र के सिपाही तैनात नहीं होंगे। दैनिक जागरण ने नीट पेपर लीक मामले पर शीर्षक दिया है, संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा, उसकी परिभाषा में किसे माना जाए पेपर लीक। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में नीली क्रांति का महाअभियान, बेकार पड़ी चौर की जमीन को तालाब बनाकर संवारेगी सरकार। प्रभात खबर लिखता है, स्कूलों और कॉलेजों में बिना हेलमेट वाले वाहनों की होगी नो एंट्री, जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश, दक्षिण बिहार में मौसम रहेगा गर्म। पटना के दिलीप कुमार तथा सिवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

समीन अयाज झांसवी का कलाम आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में समाप्त किया। और कहते हैं कि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो जब दरपेश आते हैं ज़िंदगी गुजारने के दरमियान, तो इंसान के ऊपर दो तरह की कैफियत जाहिर होती है, या तो वो बिखरता है या तो वो निखरता है। यकीनन बिखरने वालों की तादाद कसीर है और निखरने वालों की तादाद गरचे कम है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो हमारे लिए मशाले राह हैं। इसी तौर पे हम अगर कहें कि रमज़ असीम आबादी, जो कि कोहना मशहूर शायर थे, वो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को अपनी शायरी में ढालते रहे। रम्स का असल नाम रज़ा अली ख़ान था और वो पटना सिटी के मोहल्ला सोनार टोली में पैदा हुए। घर पर ही उनकी इब्तदाई तालीम हुई और बाज़ाब्ता तालीमी सिलसिला जारी रखने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी खुददाद सलाहियतों के बिना पर उन्होंने लोगों को अपनी जानिब खींचा। बहुत छोटी उम्र में ही माशी मसाइल में फंसे और ज़िंदगी की तलख राहों पे सफ़र को जारी रखा। रम्ज़ का जो शुमार है वो अज़ीमाबाद के अहम तरीन शायरों में होता है। रम्ज़ ने एक बहुत दबी कुचली और इस्तेहसाल ज़दा ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने मज़दूरी की, रिक्शा चलाया और जीने के लिए वो हर तरह का काम किया। आखिर में एक छोटी सी मामूली नौकरी भी की और रम्ज़ की शायरी जीने के उन शक्लों में हासिल होने वाले तजुर्बात और एहसास का एक तकलीफ़देह बयान भी है। उन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में समाज में हर तरफ फैले हुए इस

0: साल की अलग अलग शक्लों को बेनकाब किया है, और यही वजह है कि वो अपने सुनने वालों की जानिब नए बाब के साथ हाजिर होते हैं। रम्ज़ की मजदूर शायर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज़ को अपनी शायरी में जगह दी। रम्ज़ ने 1949 के आसपास में शायरी शुरू की थी, और उनका पहला मजमूआ नगमे संग 1988 में शाया हुआ, और दूसरा मजमूआ शाखे जैतून 1998 में। रम्ज़ की गज़लों के साथ ही उनकी नज़्में भी बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। रम्ज़ की वफ़ात 15 जनवरी 1997 में कसम पुरजे की हालत में हो गई। आए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब लीजिए मुतवज्जे हुए चाहते हैं आपकी समातों के हवाले। ये महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा मुलायजा हो।
1: शायर नासिर काज़मी ने क्या खूब कहा है कि आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। सामईन, आज के महफिल सुखन में मैं मोहम्मद एजाज हुसैन आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की इस महफिल में जो शोरका हजरात हाजिर हैं, आइए उनका तारुफ कराते चलें। आप हैं मोइनुद्दीन अंसारी अल मारूफ मोइन ग्रीडवी, और दूसरे शायर हैं मुनव्वर हुसैन रिजवी अल मारूफ मुनव्वर दानापुरी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। हसरत मोहानी के इस शेर के साथ कि आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है रहा रहा न रहा, इसी मिसरे के साथ मैं सबसे पहले दावत सुखन देना चाहता हूँ मुनव्वर हुसैन रिजवी अलमारूफ मुनव्वर दानापुरी साहब को कि वो अपने गज़लों से सामईन को महजूज कराएं।
2: मुनव्वर गज़ल का मतलब अर्ज है, शमसो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, शमसो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, शमसो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, क्यों कर नजर हटाऊं जो उनसे नजर मिले। शमसो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, क्यों कर नजर हटाऊं जो उनसे नजर मिले। और शेर देखेंगे कि हमको फलक के उनको जमी के सफर मिले, हमको फलक के उनको जमी के सफर मिले, ये बात अलग है हम ही उन्हें हम सफर मिले। और उनका नजरिया कुछ रहा मेरा नजरिया कुछ, उनका नजरिया कुछ रहा मेरा नजरिया कुछ, क्यों कर किसी से फिर मेरी फिक्रो नजर मिले। उनका नजरिया कुछ रहा मेरा नजरिया कुछ, उनका नजरिया कुछ रहा मेरा नजरिया कुछ, क्यों कर किसी से फिर मेरी फिक्रो नजर मिले। और तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, आसमान अदब पर नहीं रहा, मुझको किराम मेहरो नजूमो कमर मिले। तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, मुझको किराम मेहरो नजूमो कमर मिले। और शेर देखेंगे कि सारे जहाँ का जुगनू बना मरकज़े निगाह, सारे जहाँ का जुगनू बना मरकज़े निगाह, मरकज़े निगाह, यूँ तो हर एक पतिंग को ही बालों पर मिले। सारे जहाँ का जुगनू बना मरकज़े निगाह, मरकज़े निगाह, यूँ तो हर एक पतिंग को ही बालों पर मिले। और कोई ज़मीं खाह फलक का रहे चिराग, कोई ज़मीं खाह फलक का रहे चिराग, फलक का रहे चिराग, अहले जहाँ को रोशनी उनसे मगर मिले। कोई ज़मीं खाह फलक का रहे चिराग, फलक का रहे चिराग, अहले जहाँ को रोशनी उनसे मगर मिले। और अगला शेर इस तरह है कि हक है करेंगे औजे सुरैया की आरजू, हक है करेंगे औजे सुरैया की आरजू, औजे सुरैया की आरजू, मर्रीख मुश्तरी पे हमें फतह गर मिले। हक है करेंगे औजे सुरैया की आरजू, औजे सुरैया की आरजू, मर्रीख मुश्तरी पे हमें फतह गर मिले। और शेर देखेंगे कि सरतानी होती सुम्बली मीजानी अकरबी, सरतानी होती सुम्बली मीजानी अकरबी, मीजानी अकरबी, सब अपने बुर्ज के जेरे असर मिले।
3: बहुत अच्छे।
2: सरतानी होती सुम्बली मीजानी अकरबी, मीजानी अकरबी, सब अपने अपने बुर्ज के जेरे असर मिले। और गहराइयों में बहर के बरसो रहे हैं हम, गहराइयों में बहर के बरसो रहे हैं हम, किस्मत से जाके अब हमें लालो गुहर मिले। गहराइयों में बहर के बरसो रहे हैं हम, बरसो रहे हैं हम, किस्मत से जाके अब हमें लालो गुहर मिले। और मख्तार्ज है के दुनिया इल्म फन के मुनव्वर चिराग से, दुनियाई इल्म फन के मुनव्वर चिराग से, मुनव्वर चिराग से, हर दौर हर सदी को नए राह बर मिले। दुनियाए इल्म फन के मनव्वर चिराग से, मनव्वर चिराग से, हर दौर हर सदी को नए राह बर मिले।
3: बहुत अच्छे।
2: शम्सो नजूमो चाहे फलक पर कमर मिले, क्यों कर नजर हटाऊं जो उनसे नजर मिले।
3: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और अगली गजल इस तरह है कि निगाह फिक्र फलक पर नई तलाश में है, निगाह

0: ओ फिक्र फलक पर नई तलाश में है, नई तलाश में है, नई सदी का सुखनवर नई तलाश में है। निगाह ओ फिक्र फलक पर नई तलाश में है, नई तलाश में है, नई सदी का सुखनवर नई तलाश में है। बदल रहे हैं नजरियाते शायरी व अदब, बदल रहे हैं नजरियाते शायरी व अदब, अदीबिया के हो शायर नई तलाश में है।
1: वाह वाह,
0: बदल रहे हैं नजरियाते शायरी व अदब, शायरी व अदब, अदीबिया के हो शायर नई तलाश में है। शेर देखेंगे कि चांद
1: वाह,
0: तारे पे आएगा इनकलाब का दौर,
1: क्या बात है,
0: कि चांद तारे पे आएगा इनकलाब का दौर, इनकलाब का दौर,
1: वाह
0: अब इस सदी का सिकंदर नई तलाश में है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: कि चांद तारे पे आएगा अब इनकलाब का दौर, अब इनकलाब का दौर, अब इस सदी का सिकंदर नई तलाश में है। और निज़ाम शम्सी की तारीख भी लिखेंगे वही,
1: वाह वाह,
0: निज़ाम शम्सी की तारीख भी लिखेंगे वही, लिखेंगे वही, निगाह जिनकी फलक पर नई तलाश में है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा,
0: निज़ाम शम्सी की तारीख भी लिखेंगे वही, लिखेंगे वही, निगाह जिनकी फलक पर नई तलाश में है। शेर देखेंगे कि हजारी आज भी इजाद हो इनका शाफ का काम, हजारी आज भी इजाद हो इनका शाफ का काम, इजाद हो इनका शाफ का काम, जो है उरूज का मजहर नई तलाश में है। जो है उरूज का मजहर नई तलाश में है। हजारी आज भी इजाद हो इनका शाफ का काम, इजाद हो इनका शाफ का काम, जो है उरूज का मजहर नई तलाश में है। शेर देखेंगे कि बंधेगा सेहरा यकीनन उसी के सर पे तमाम,
1: वाह वाह वाह,
0: बंधेगा सेहरा यकीनन उसी के सर पे तमाम, उसी के सर पे तमाम, वो नौजवान जो अक्सर नई तलाश में है।
1: वाह बहुत खूब,
0: बहुत
1: बहुत खूब,
0: बंधेगा सेहरा यकीनन उसी के सर पे तमाम, उसी के सर पे तमाम, वो नौजवान जो अक्सर नई तलाश में है। अदीब व शायर व नाकिद के फलसफ़ी व हकीम, अदीब व शायर व नाकिद के फलसफ़ी व हकीम, फलसफ़ी व हकीम, तमाम शोबे का रहबर नई तलाश में
1: वाह
0: है।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत
0: अदीब व
1: खूब,
0: शायर व
1: बहुत अच्छा,
0: नाकिद के फलसफ़ी व हकीम, फलसफ़ी व हकीम, तमाम शोबे का रहबर नई तलाश में है। नई सदी में नया इनकलाब आएगा,
1: वाह वाह,
0: नई सदी में नया
1: नया
0: इनकलाब
1: इनकलाब
0: आएगा,
1: आएगा,
0: एक एक निगाह मनव्वर नई तलाश में
1: वाह
0: है।
1: वाह,
0: नई सदी में नया इनकलाब आएगा, नई सदी में नया इनकलाब आएगा, नया इनकलाब आएगा, एक एक निगाह मनव्वर नई तलाश में
1: नई
0: है।
1: तलाश में होगा,
0: निगाह व
1: बहुत
0: फिक्र
1: अच्छा,
0: फलक पर नई तलाश में है, अब इस सदी का सुखनवर नई तलाश में
1: वाह
0: है। एक गजल और पेश खिदमत है जिसका मतलब है, जिस सिमत हम कदम को बढ़ाते चले गए, जिस सिमत हम कदम को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते
1: वाह
0: चले गए, एक राह नो वहां से बनाते चले गए।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: जिस सिमत हम कदम को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, एक राह नो वहां से बनाते चले गए। मंजिल का कुछ पता न निशान अपनी राह का, मंजिल का कुछ पता न निशान अपनी राह का, निशान अपनी राह का, फिर भी निशान राह बनाते चले गए।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मंजिल का कुछ पता न निशान अपनी राह का, फिर भी निशान राह बनाते चले गए। और शेर देखेंगे कि आगे भी चांद तारों से मंजिल की खोज में, आगे भी चांद तारों से मंजिल की खोज में, मंजिल की खोज में, राहें हम आसमां में बनाते चले गए।
1: वाह वाह,
0: आगे भी चांद तारों से मंजिल की खोज में, मंजिल की खोज में, राहें हम आसमां में बनाते चले गए। और शेर देखेंगे कि तूफान सा जिन में अज़्म था, मौजों सा जिन में जोश, तूफान सा जिन में अज़्म था, मौजों सा जिन में जोश, मंजिल के बाद मंजिले पाते चले
1: वाह
0: गए।
1: वाह वाह,
0: तूफान सा जिन में अज़्म था, आते रहना हमारा भी अहद है, बढ़ना बढ़ाते रहना हमारा भी अहद है, जो गिर पड़े थे उनको उठाते चले
1: उठाते
0: गए।
1: चले गए, वाह वाह वाह वाह,
0: बढ़ना बढ़ाते रहना हमारा भी अहद
1: उठाते
0: है,
1: रहना,
0: हमारा भी अहद है, जो गिर पड़े थे उनको उठाते चले गए। हम कासिदे बहार हैं, बादे सबा हैं हम कासिदे बहार हैं, बादे सबा हैं हम, गुजरे जिधर से फूल खिलाते चले गए।
1: वाह वाह वाह,
0: हम
1: बहुत
0: कासिदे
1: अच्छे,
0: बहार हैं, बादे सबा हैं हम, बादे सबा हैं हम, गुजरे जिधर से फूल खिलाते चले गए। शेर देखेंगे, लाकर
1: हाँ
0: एक एक शोबे में यारो हम इनकलाब, लाकर एक एक शोबे में यारो हम इनकलाब, हम इनकलाब, तारीख नौ का बाब बनाते चले
1: वाह
0: गए।
1: वाह वाह वाह,
0: लाकर एक एक शोबे में यारो हम इनकलाब, लाकर एक एक शोबे में यारो हम इनकलाब, तारीख नौ का बाब बनाते चले गए। और मख्तारज़ है के एक अपने हाथ में मनव्वर चिराग था, एक अपने हाथ में मनव्वर चिराग था, मनव्वर चिराग था, एक एक चिराग उससे जलाते चले गए।
1: वाह वाह वाह,
0: एक
1: बहुत अच्छे,
0: अपने
1: बहुत
0: हाथ
1: अच्छे,
0: में
1: बहुत
0: मनव्वर चिराग था, मनव्वर चिराग था, एक एक चिराग इससे जलाते चले
1: जलाते चले गए,
0: गए।
1: बहुत अच्छे,
0: जिस
1: वाह
0: सिमत
1: वाह,
0: हम कदम को बढ़ाते चले गए, एक राह नौ वहां से बनाते चले
1: बहुत
0: गए।
1: अच्छे,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह
1: खूब,
0: वाह,
1: बहुत खूब,
0: एक अपने हाथ में जो मनव्वर चिराग था।
2: ایک ایک چراغ

0: बहुत अच्छे
1: और
0: हैं।
1: मनवर साहब यह शेर समाप्त फरमाए
0: इरशाद
1: खास
0: इरशाद
1: तौर से।
0: इरशाद
1: हाथ से हाथ मिला कर न तराशो
0: हाँ, क्या कहना भाई, हाथ से हाथ
1: उंगली,
0: मिलाकर न तराशो उंगली।

0: जाए।
1: वाह वाह भाई, बहुत अच्छे।
0: चली है बातें सर सर हर शजर, दोहराना हो जाए।
1: वाह भाई, वाह।

0: और ये भी शेर समाप्त फरमाए।
1: इरशाद
0: फलक पर होती है सरगोशियां अक्सर फरिश्तों
1: वाह भाई, बहुत अच्छे,
0: में,
1: बहुत खूब।
0: फलक

0: बड़ी मुश्किल से अब बादल छटे हैं, साफ मतला है।
1: क्या कहना भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब।
0: बड़ी

0: जाए।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: वाह
1: खूब,
0: खूब,
1: बहुत
0: बहुत
1: खूब।
0: बहुत शुक्रिया।
2: बड़ी मुश्किल से अब बादल छटे हैं, साफ मतला है, निगाहों पर मसल्लत फिर कोई कोहरा ना हो जाए।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छे।
2: तो ये थे जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी, अल मारूफ मोइन ग्रेडवी। लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। बशीर बद्र के इस मिसरे के साथ ही आज का महफिल सुखन यहीं अख्तिताम पज़ीर होता है। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने उमदा कलाम से हमारे सामईन को सरशार किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी आपका भी बहुत बहुत
1: आपका भी
0: शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया।
3: सामीन महफिल सुखन के तहत ये स्टूडियो मुशायरा अभी आप समाअत फरमा रहे थे, और हमारी ये अगली जो पेशकश है वो बज़्म मौसीकी। आइए इसके तहत हम आपको सुनवाते हैं ये गज़ल। आवाज़ जगजीत सिंह की है और कलाम है निदा फाजली।

निदा फाजली का कलाम आप जगजीत सिंह की आवाज़ में सामईन समाप्त कर रहे थे, और इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इसी वादे और इरादे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं महबूब और संगीतकार अदनान शमी।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे दिल तेरा आशिक फिल्म का, मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार होंगे समीर और संगीतकार नदीम शर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे शादी करके फंस गया यार फिल्म का, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार होंगे जलीश शर्वानी और राशिद लखनऊ और संगीतकार डब्बू मलिक।

0: should therefore assume equal responsibilities with parents in creating conditions that enable projection of women in a decent, dignified way and promote violence-free programs. The models posing for advertisement should also be sensitive to what the public would consider indecent and avoid such portrayal. It is essential to enlist the support of policy makers and parliamentarians on the appropriate policy and guidelines for the media to ensure that there is no negative portrayal of women. Therefore, the most important objectives of media should be to create awareness among the programs related to the improvement of women's status, and they must free themselves to assert as human beings socially, morally, co-equal and politically with men. There must be encouraging portrayal of women, making a note of their role in all aspects of life. To revolutionize this condition, it is needed to monitor the media and point out the merits and demerits constantly.
1: You just heard a talk on the topic, Positive Portrayal of Women in Media and Laws for It by Aishwarya Riti. This is Akashwani Patna broadcasting on Media Wave 483.1 meters corresponding to 621 kilohertz. Please stand by for our next announcement.
2: अभी आप अंग्रेजी वार्ता सुन रहे थे. विषय था पॉजिटिव पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया एंड लॉज फॉर इट. आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
4: बदलो बदलो आदत बदलो.
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो. अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए. अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें. RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: रविवार के दिन संध्या 6:45 से आकाशवाणी पटना पर अवश्य सुने कार्यक्रम ममता का आंचल. साथ में होंगी IVF विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार.
7: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है. आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल.

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाता

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गीत सुन रहे थे। कलाकार थे अनुपमा शरण। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप हम फिल्म का गीत सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे हम आपके हैं कौन फिल्म का, लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीतकार होंगे देव कोहली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

लम्हे फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और ए हरिहरन की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार शिव हरी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं टुकू पाठक और संतराज सिंह रागेश। टुकू पाठक से पहले सुनिए देवी गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे टुकू पाठक और संतराज सिंह रागेश। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुरों का सफर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कब्बन मिर्जा पर आधारित कार्यक्रम। आलेख और प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सभा की है। स्वर सहयोग है संतोष पोद्दार का।

श्रोताओं, सुरों के सफर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। भारतीय संगीत के इतिहास में कुछ ऐसी आवाजें हुई हैं जो जब गूंजती है तो रूह को छू लेती हैं, लेकिन अफसोस वक्त की गर्द में वो कहीं खो जाती हैं। एक ऐसी ही मखमली, भारी और रूहानी आवाज जिसने रजिया सुल्तान फिल्म में जब गाया

आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे तो सुनने वालों के दिल थम गए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेहद उम्दा और गुमनाम कलाकार कब्बन मिर्जा की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे कब्बन मिर्जा का असली नाम था अशफाक हुसैन मिर्जा। कब्बन तो उनका घरेलू नाम था जो बाद में उनकी पहचान बन गई। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। वो किसी उस्ताद से सीखे हुए शास्त्रीय गायक नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज में जो भारीपन और ठहराव था वो कुदरत का नायाब तोहफा था।

कबर मिर्जा की जिंदगी से जुड़ी वैसे तो कई छोटी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी फिल्म रजिया सुल्तान में उनका चुना जाना अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस दिलचस्प किस्से के पीछे मशहूर फिल्म मेकर कमाल अमरोही की जिद और कब्बन मिर्जा की सादगी की एक बेहद रोचक कहानी है। बात 1970 के दशक के आखिरी सालों की है। कमाल अमरोही अपनी भव्य फिल्म रजिया सुल्तान की तैयारियों में जुटे थे। फिल्म में एक बेहद अहम किरदार था याकूत, जिसे धर्मेंद्र निभा रहे थे। याकूत एक हबसी गुलाम था। कमाल अमरोही चाहते थे कि पर्दे पर जब धर्मेंद्र गाएं या बोलें तो बैकग्राउंड में एक ऐसी आवाज हो जो बहुत भारी हो, जिसमें गजब की मर्दानगी हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द और रुमानियत भी हो। कमाल साहब ने मुंबई के कई बड़े और नामचीन गायकों के ऑडिशन लिए, लेकिन उन्हें वो बात नहीं मिल रही थी जो उनके जहन में थी। एक दिन कमाल अमरोही अपनी कार से कहीं जा रहे थे और कार में रेडियो चल रहा था। अचानक रेडियो पर एक गजल गूंजी और कमाल साहब ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वो गाड़ी किनारे लगाकर उस आवाज को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे स्टार नहीं

बस यही आवाज चाहिए। गाना खत्म होते ही रेडियो अनाउंसर ने नाम लिया। अभी आप सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार कब्बन मिर्जा को। कमाल साहब ने तुरंत ठान लिया कि याकूत की आवाज यही शख्स बनेगा। जब उन्होंने संगीतकार खयाम साहब से इस बारे में बात की तो शुरुआत में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और कुछ लोग थोड़े हिचकिचाए। उनका कहना था कि इतनी बड़ी बजट की फिल्म में किसी बड़े और नामचीन प्लेबैक सिंगर को होना चाहिए, न कि रेडियो के किसी अनजान गायक को। लेकिन कमाल अमरोही अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने साफ कह दिया, याकूत के किरदार को कोई स्टार नहीं बल्कि यह रूहानी आवाज जिंदा करेगी। संगीतकार खयाम साहब के निर्देशन में कब्बन मिर्जा ने वो गाना गाया जिसने उन्हें अमर कर दिया। आइए सुनते हैं इतिहास के पन्नों से निकला यह शाहकार गीत।

कहा जाता है जब यह गाना थिएटर में गूंजा तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस दौर में ऐसी भारी और बेस वाली आवाज किसी और गायक की नहीं थी। कई लोगों को तो

शुरुआत में लगा मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज बदल कर गाया है, लेकिन जब क्रेडिट्स में कब्बन मिर्जा का नाम देखा तो सब इस गुमनाम फनकार के मुरीद हो गए। रजिया सुल्तान के गाने सुपरहिट रहे, कब्बन मिर्जा रातों रात मशहूर हो गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस आवाज के दम पर वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे थे, उसी आवाज पर ग्रहण लग गया। कब्बन मिर्जा को गले का कैंसर हो गया। एक गायक के लिए

कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ते हुए साल 2003 में कब्बन मिर्ज़ा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सच्चे संगीत प्रेमियों के दिल में कब्बन मिर्ज़ा आज भी जिंदा हैं। जब भी कोई सच्चा संगीत प्रेमी दर्द और मोहब्बत को महसूस करना चाहता है, वो कब्बन मिर्ज़ा को ज़रूर सुनता है। कब्बन साहब, आपकी आवाज़ की ये झनकार हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।

0: सुरों के सफर के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुरों का सफर, सफर।
2: सुरों का सफर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायक कब्बन मिर्जा पर आधारित कार्यक्रम। आलेख और प्रस्तुति थी मोहम्मद शाहिद सभा की और स्वर सहयोग था संतोष पोद्दार का।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए सुनते हैं श्रोताओं के द्वारा व्यक्त विचार। पहले सुनिए मिथिलेश तिवारी, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बधाई।

कई लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस

0: और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कानून की बातें कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता। महिला और बच्चों की सुरक्षा, BNS कितना सख्त। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर गणेश गुंजन, भेंटकर्ता हरेंद्र आजाद।
3: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम कानून की बातें में। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के BNS कितना सख्त है इसके बारे में। और इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गंगेश गुंजन। आप पटना हाईकोर्ट में जाने माने अधिवक्ता हैं और लंबा कार्य अनुभव है। हम विस्तार से जानेंगे इस विषय पर। सबसे पहले कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
3: सर, जैसा कि मैंने बताया कि अब IPC के जगह BNS ने ले लिया है और BNS में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से क्या विशेष प्रावधान है, कैसे उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कानून है?
4: जहाँ तक BNS और IPC का सवाल है
3: जी
4: हरेंद्र बाबू, जैसा कि आपको जानकारी होगी, पूरे देश को जानकारी है, पूरी दुनिया की जानकारी है, जब दिसंबर में निर्भया की घटना घटी थी तो उसके बाद 13 में IPC में बहुत ही विस्तृत पैमाने पर, जब अलग सेक्शन था 375-76, तो उसमें पूरे विस्तार से उसमें उस समय ही चेंज आए थे
3: जी।
4: जैसे पहले रेप की घटना में या रेप के बाद जो घटनाएं होती थी उसके जो प्रावधान थे उसमें बहुत ही सख्त हुए
3: जी।
4: इवन कि इसमें पहले रेप के केसेज में या रेप के बाद

0: जो मर्डर होते थे उसमें जो हत्या हो जाती थी, मृत्यु तक तो था, फांसी का प्रावधान नहीं था, मृत्यु दंड हो जाए तो फिर फांसी। अब तो 10 साल से आप समझ लीजिए कि कोई भी घटना अगर घटती है महिलाओं के साथ
1: जी,
0: तो वो कम बस 10 साल से नीचे की कोई सजा नहीं है
1: जी,
0: सारी सजाएं 10 साल से ऊपर की हैं, 10 साल से फांसी की तक ये पूरी सजा है। 2023 में जब ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, जो बहुत सारे ऐसे कानून थे, बहुत सारे ऐसे एक्ट, उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनको लगा कि बहुत पेचीदा है या जिनको समझना लोगों के लिए आसान नहीं हो रहा है, इसको बहुत ही सहज और सुलभ तरीके से कुछ चीज़ों को विस्तारित किया और कुछ चीज़ों को कम किया। विस्तारित करने में खास करके महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस दिया गया, जो आपका संदर्भ है, जो आपने प्रश्न किया है, बड़ा ही तार्किक और समय के साथ जो चलने वाली बातें हैं, जो समय के साथ जो बात की जानी चाहिए उस पर
1: विषय
0: को रखा है। महिलाओं पर तो बात पहले बहुत ज़्यादा होती थी, और 2019 के बाद जो बच्चों की आपने बात की
1: जी,
0: वो पक्स एक्ट के तहत में कड़े प्रावधान भी लागू हुए
1: जी।
0: महिलाओं के सवाल पर पहले जो था, महिलाओं या जो कम उम्र के बच्चे के हैं उनके लिए एक अलग पॉक्सो अब बहुत कड़े फॉर्म में है, और पॉक्सो के साथ साथ वो बीएनएस में जब आ रहा है तो दोनों मिला करके सिर्फ प्रावधान तक सीमित नहीं है
1: जी।
0: इसको कैसे उनको और सजा देना भी प्रावधान नहीं है, एक रिफॉर्म की बात भी है वहाँ, और लोगों को ये एहसास दिलाने की बात है कि आप ये गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इस पर भी कानून ने अपना बहुत ही विस्तृत पैमाने पर फोकस रखा है
1: जी।
0: उस समय जब कोई घटना घटती है या जो भी होते हैं तो जांच का जो दायरा है वो भी बहुत शॉर्ट हुआ है, पहले था कि वो
1: काफ़ी
0: साल दर साल चल रहा है, अब जांच क्या है कि आपको 2 महीने में ही उसको जाँच पूरी करनी है, 2 महीने में जांच पूरी करनी है और फाइनल 4 महीने में 2 और महीने एक्सटेंड करके उसकी जो भी उसके निर्णय होंगे वो आपको दे देना है,
1: न्यायालय को
0: फाइनल कर देना है,
1: 4 महीने
0: में वहाँ फाइनल में पहुंच जाना है। अनलेस अनटिल की बहुत सारी वैसी की जांच में कोई बहुत बात नहीं आया, जैसे अभी जो हाल फिलहाल में हमारे राज्य में जो घटना घटी है उसमें भी देख रहे हैं हम कि बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है उसमें, और ये सारा कार्रवाई चलेगी और ये अच्छा होगा।
1: सर आपने बखूबी बता दिया कि कैसे बदलाव हुआ है, एक समय था कि जब सिर्फ 10 साल या साल में सजा दी जाती थी लेकिन अब फांसी तक बात पहुंच गई है। एक मामला और देखने को मिल रहा है आए दिन कि शादी का झांसा दे करके और जो शारीरिक संबंध बनाते हैं महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, तो इसमें बीएनएस के कौन से कैसे प्रावधान है?
0: वो पहले था सेक्शन, अभी 69 है
1: जी,
0: इसमें शादी का झांसा दे करके या जो भी करते थे लोग, इसमें एक चीज और है, शादी का झांसा देना और शादी के झांसा देने में जो व्यक्ति कर रहा है, जो झांसा दे रहा है
1: जी,
0: क्या वो सीधे सीधे जिम्मेवार है? कई बार ऐसे होता है, मान ली कि आप किसी अच्छे होदे पे हैं, आपने किसी को झांसा दिया, बाद में शादी नहीं हुई या हुई, नहीं हुई या हुई दो ही चीज हो सकती है, नहीं हुई तो ये जरूरी नहीं है कि जो झांसा देने वाला व्यक्ति है सीधे सीधे वही जिम्मेवार है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो तो चाहता है लेकिन उसके गार्जियन नहीं चाहते हैं ऐसा, तो ये कोर्ट इस मामले में बिल्कुल निर्णय लेता है कि क्या मुझे देखना है। वो कोर्ट अगर ऐसा पाता है कि नहीं झांसा देने वाला व्यक्ति सही में झांसा दिया है तब तो वो गलत है, तब तो उनको ये सजा के दायरे में आएंगे, अगर ऐसा नहीं है तब कोर्ट उस पर कोर्ट निर्णय लेगा कि झांसा झांसा है या उसकी मजबूरी है या जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उससे वो बाध्य हो रहा है।
1: अच्छा अच्छा, तो सर अगर कोई सही में साबित हो जाता है कि झांसा दिया है तो उसके लिए किस तरह के पनिशमेंट, सजा का प्रावधान?
0: उसके लिए 10 साल का है
1: जी,
0: 10 साल के प्रावधान उसके लिए।
1: अच्छा, और कई स्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है,
0: 10 साल का प्रावधान है लेकिन वो अलग अलग है, जैसे एज के हिसाब से भी वो बदलेगा, किस एज के बच्चे को आप ये कर रहे हैं,
1: मतलब एक मोटा मोटी 10 साल है लेकिन उसके कई और प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज हो।
0: एज की बात अगर हम करें तो पहले आपको जैसे निर्भया कांड में एक चीज आपको याद होगा, 17 साल का एक व्यक्ति था जो वो माइनर होकर अपना पनिशमेंट से छूट गया
1: जी,
0: इसको भी बीएनएस ने चेंज किया है, बीएनएस में वहाँ भी चेंज हुआ था और यहाँ उसको बहुत सख्ती से किया है, वो 17 साल मतलब हार्ड 17 साल हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा, 16 से 18 वो भी आएंगे तो वो जो मैच्योर पर्सन है, जो मेजर पर्सन है, उसी वही प्रावधान उनके लिए भी लागू होगा, प्रोसीजर वही फॉलो होगा।
1: मतलब इस तरह के कुकृत्य में अपराध का जो दायरा है बड़े स्केल पर तो वहां पे एज का रिलैक्सेशन कोई आसानी से नहीं ले सकता।
0: 16 साल का भी होगा तो बहुत आसानी से नहीं ले सकता।
1: क्या बात है।

0: सर जो पीड़िता होती हैं कई मामलों में हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग पहले हम जो देख ही रहे हैं टीआरपी का दौर चल रहा है, पहचान उजागर करते हैं, तो ऐसे में बीएनएस किस तरीके से उन पर
1: नहीं,
0: रोक लगा
1: उन
0: रही है?
1: पर पहचान उजागर नहीं करना है।
0: जी
1: अगर पहचान उजागर करते हैं तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है।
0: जी
1: आपको वो पहचान उजागर नहीं करना है, किसी का भी कोई भी हो उसको पहचान छुपा करके ही। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जो खास करके जो उत्पीड़न या किसी चीज़ का होता है तो उनके लिए पहचान उजागर करना और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी होती है।
0: जी
1: उस स्थिति में वो कहीं डाइवर्ट न कर जाए या बहुत ज़्यादा ही सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते वो दबाव में ना आ जाए, बहुत तरह
0: एक
1: की
0: गलानी
1: परेशानी।
0: के भाव
1: हाँ,
0: से लोग
1: ग्लानि के
0: जीने
1: भाव से
0: लगते
1: भी जीने
0: हैं,
1: लगते हैं, वो
0: मन ही मन
1: मन
0: मरने
1: ही
0: लगते
1: मन
0: हैं।
1: बहुत
0: जी
1: इसमें ग्लानि के भाव से जीने नहीं लगते हैं, बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
0: जी जी और सर बच्चों के जो खरीद फरोख्त होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला हम लोग देखते हैं, तो इसको लेकर के बीएनएस कितना सख्त है?
1: बिल्कुल, इसके मामले में भी बहुत सख्त है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में जैसे भीख मंगवाने का है
0: जी
1: तो बहुत बहुत तो ऐसे जो भीख मंगवाते हैं लोग, दो तरह से लोग करते हैं,
0: जी
1: या तो बच्चों को ये पकड़ लिया उन्होंने और करवाया तो उसके लिए 10 साल है। बहुत मामले में आपने देखा होगा, आप बहुत जगहों पर देखा होगा, स्टेशन पर देखा होगा, एयरपोर्ट, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि बच्चे अपंग हैं।
0: जी
1: वो बेसिकली अपंग होते नहीं हैं, उनको उनका जो बॉस होता है या जो अपहरण करने वाले जो लोग होते हैं वो अपंग बना देते हैं,
0: क्या बात
1: और
0: जी
1: वो उससे अपंग बना करके भीख मंगवाते हैं जिससे उनकी आमदनी ज़्यादा हो। वो तो उन आमदनी के वजह से चलते हैं। इस मामले में सज़ा सीधा दुगनी, यानी 20 साल की सज़ा होगी। फिर
0: अगर
1: बीस
0: ऐसी
1: साल
0: स्थिति
1: ऐसी
0: है,
1: स्थिति रहे तो, अगर ऐसी स्थिति
0: बच्चे को
1: आती है,
0: अपंग होने के लिए मजबूर किया गया और
1: अपंग
0: भीख मंगवाया
1: अपंग
0: जाए।
1: कर देते हैं, आप
0: जी
1: अपंग बना
0: जी
1: देते हैं, हाथ पैर
0: अच्छा
1: काट देते
0: अच्छा
1: हैं,
0: जी जी
1: तब 20 साल की सज़ा का प्रावधान
0: निश्चित रूप
1: इसमें
0: से, तो हमारे
1: है।
0: श्रोता इस बात को सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि बच्चों के साथ अगर ज्यादती इस तरह की इस लेवल पे हो रही है तो हमारे देश में कितना सख्त कानून है। सर आपने चर्चा भी किया, अगर किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म के मामले तो हम लोग देखते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है प्रावधान?
1: नाबालिग के सामने तो उम्र के हिसाब से अलग अलग है। अगर 7 साल का बच्चा है,
0: हालांकि आपने
1: 12 साल
0: चर्चा भी
1: का
0: किया कि इसके लिए
1: है,
0: ऑलरेडी
1: हाँ,
0: पॉक्सो
1: वो
0: एक्ट
1: अलग
0: था।
1: अलग अलग है, अभी
0: जी
1: भी है,
0: जी
1: था क्या है 19 में, और सख्त हुआ है बीएनएस के साथ।
0: जी
1: बीएनएस का सेक्शन 93, 94, 96 उधर जो ये करता है वो पॉक्सो एक्ट को बड़ा कोरिलेट करते हुए करता है, और बच्चों को किसी भी स्थिति में वो नहीं चाहता है, कानून नहीं चाहता है, इवन समाज भी नहीं चाहता है, लेकिन समाज तो बहुत चीज़ नहीं कर पाता है। कानून बहुत बार बनते हैं लेकिन कानून का पालन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कानून का पालन किस ढंग से हो। तो बच्चों के मामले में खास करके बीएनएस के साथ साथ पॉक्सो एक्ट बहुत ही सख्त हुआ है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पर अच्छे काम हो रहे हैं और बेहतरीन काम हो रहे हैं। बच्चों के मामले में एज का कैटेगराइजेशन अलग अलग है, 7 साल, 12 साल,
0: जी
1: 15 साल, 18 साल, ऐसे।
0: अच्छा, तो सर अब हम थोड़ी बात करते हैं महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को लेकर के। हम लोग आए दिन देख रहे हैं आजकल स्नैचिंग का जो मामला है काफी बढ़ा हुआ है, हम लोग देखते हैं ना कि वो गले से चेन तोड़ के लेके चले जाते हैं, पीछे से आए लोगों का मोबाइल भी स्नैच हो जाता है। किसी महिला का अगर मंगलसूत्र कोई स्नैच कर लेता है तो इसको लेकर के बीएनएस में क्या प्रावधान है? अलग से एक धारा 304 भी शायद ऐड हुआ है, क्या है कुछ इसमें खास?
1: उसमें देखिए ऐसा है ना कि जब आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो वो महिलाओं के सिर्फ मॉडेस्टी को देख नहीं देखा जाता है, बल्कि उनके अस्तित्व पर खतरा उसको
0: जी
1: इस रूप में ले रहा है कि इनके महिलाओं के जो अस्तित्व हैं उस पर आप हमला कर रहे हैं। पहले एक सेक्शन आईपीसी में 509 भी था,
0: जी
1: वो जस्ट है कि आप कैसे इशारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीर अपराध के रूप में बीएनएस ने इसको बहुत अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है।
0: हर
1: अब
0: चीज को
1: हर
0: क्लियर
1: चीज़
0: कर
1: को
0: दिया।
1: कैरेक्टराइज कर दिया है। जैसे कानून तो होते हैं भाई, एक होते हैं, एक में जो फ्रेम में बैठते हैं वो बैठते हैं, लेकिन अब बीएनएस ने किया है जो कानून जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं थी या जिसको दूसरे में मर्ज किया जा सकता था मर्ज किया है, जिसको वहाँ से हटाना चाहिए था हटाया है, और जिसको अलग अलग कैटेगराइज करके बहुत विस्तृत पैमाने पर उसको किया जाना था, बीएनएस में ये आपको देखने को मिलेगा।
0: मतलब प्रक्रिया भी साफ हो गई है,
1: प्रक्रिया भी साफ हो गई,
0: आसान
1: बिल्कुल
0: हो गई
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: और
1: आसान हो गई
0: न्याय
1: है।
0: जल्दी सुनिश्चित हो
1: न्याय
0: सके।
1: प्रयास जरूर किया गया है,
0: जी जी
1: प्रयास जरूर
0: और
1: किया है।
0: सर बीएनएस में एक धारा 80 अब दहेज हत्या के लिए है, तो ये पीड़िता को या जो भी उससे संबंधित लोग हैं उनके जांच प्रक्रिया को और सजा दिलाने को आईपीसी से कैसे बीएनएस अलग कर रहा है?
1: देखिए पहले था कि जांच
0: क्योंकि
1: प्रक्रिया
0: दहेज हत्या भी एक बर्निंग मामला
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
0: जी
1: बहुत दहेज हत्या बहुत बर्निंग मामला है। कई बार आपने इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दहेज हत्या के मामले में भी बहुत जांच करनी चाहिए, अच्छे से जांच करनी चाहिए।

0: तरह से आपने देखा होगा उस समय महिला हिंसा, महिलाओं पर जो हिंसा के थे, तो उसके साथ दहेज हत्या वाले में बड़ा बहुत एक नैरो माइंड रखा है उसने, थोड़ा नैरो माइंड रखा है कि अगर 7 साल के अंदर भी है तो उसको जांच करके ही हम उसको दहेज हत्या के प्रभु मिलाएं। पहले था कि एक प्रिजम्पशन था, अब प्रिजम्पशन को थोड़ा लिबरल किया है, लेकिन सख्त ये किया है कि थोड़ी भी अगर गुंजाइश उसके फेवर में जाती है तो इनको दहेज हत्या माना जाएगा और सजा तो पहले से ही है उसके लिए।
1: सर, एसिड अटैक भी एक मामला
0: बहुत
1: है
0: ज्यादा
1: हमारे
0: है,
1: यहाँ,
0: बहुत ज्यादा
1: तो
0: है।
1: एसिड अटैक को लेकर के बीएनएस में सजा का क्या प्रावधान है और जांच की क्या प्रक्रिया
0: एसिड
1: है?
0: अटैक में बहुत ही सजा का कड़ा प्रावधान है। पहले तो ये प्रावधान ऐसा था भी नहीं, क्योंकि आईपीसी में ऐसी घटनाएं घट नहीं रही थी। एसिड अटैक के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान दिया गया
1: और
0: है,
1: पीड़ित को अब मुआवजा देने की भी बात की
0: मुआवजा
1: जा रही
0: देने की
1: है।
0: बात की गई है।
1: जी। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि अगर किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध हो जाए तो परिवार को पहले घंटे में कौन से ऐसे 3-4 कदम उठाने चाहिए जो उनके सुरक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए जरूरी हो?
0: अगर महिलाओं के साथ या बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले जो जो होना चाहिए वो तो कोई भी इलाज या जो भी घटना घटती है उसका हो। दूसरे, उन्हें निकट के जो थाने हैं या जो भी व्यवस्था है
1: जी
0: उनको ये सूचित करना चाहिए। सूचित करने के बाद तब देखना चाहिए कि जो नियर डियर जो समाज के लोग हैं उनको ये सूचित करें, सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी बताएं, जिससे कि मामले को वो बताएं कि भाई क्या है नहीं है, और घटना से जो संबंधित बातें हैं प्रयास करें कि झूठ सच या इधर उधर न करके जो सही बातें हैं, अगर उनके साथ घटना घटी है तो कानून इसके लिए बड़ा कड़ा प्रावधान करता है। इसमें अगर घटना घटती है तो झूठ न बोल करके जो सही बातें हैं उन्हें करके भी वो न्याय पा सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत सही सुझाव आपने दिया। और बीएनएस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं और जो सजा का प्रावधान है उसको भी विस्तार दिया गया है और प्रक्रिया आसान की गई है ताकि न्याय जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो सके और दिखे भी,
0: दिखे
1: न्याय होता हुआ समझ में आए।
0: समझ में आया।
1: आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आकाशवाणी को आपने बहुमूल्य समय दिया। डॉक्टर गंगेश गुंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार आपको।
2: कानून की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, बीएनएस कितना सख्त। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर गंगेश गुंजन, भेंटकर्ता हरेंद्र आजाद। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए सुनते हैं श्रोताओं के द्वारा व्यक्त विचार। पहले सुनिए मिथिलेश तिवारी, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार।
3: देखिए, जब मैं बचपन में सुना करता था रेडियो और जब मुखिया जी और गीता बहन का कार्यक्रम आता था तो हम लोगों में उत्सुकता रहती थी। गांव के चौपाल पर बैठ के हम जब सुनते थे तो लगता था कि हमारे बगल में ही कोई बैठ करके यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है और बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहता था। और जब समाचार आते हैं, जो शाम का समाचार हो, सुबह का समाचार हो, दोपहर का समाचार हो, ये समाचार की उत्सुकता हम लोगों में रहती थी कि रेडियो की तरफ से क्या हो रहा है। जब राजनीति में आए तो राजनीति में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे तो हम लोगों का पहला फोकस होता था कि आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित हो रहा है कि नहीं, और जब आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित होता था तो दूसरे दूसरे जगह जो हमको जानने वाले लोग हैं वो फोन करके कहते थे कि आज रेडियो पर आपका नाम आया है। और सच पूछिए, आज तो इतने नाम आते हैं कि आज उसकी बहुत कौतूहल मन में नहीं रहता है, लेकिन एक समय था जब रेडियो पर नाम आता था तो रोमांच बढ़ जाता था। और आज चूंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है और इस डिजिटल मीडिया के जमाने में भी अभी भी आकाशवाणी बहुत प्रासंगिक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के लिए अगर किसी एक चीज को चुना तो आकाशवाणी को चुना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में देश के करोड़ों लोग जुड़ते हैं और करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो वह कार्यक्रम पूरा ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जो कभी हम लोगों ने न सोचा होगा न सुना होगा। हम सबको इंतजार रहता है हर महीने के अंतिम रविवार 11 बजे दिन का, जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात आकाशवाणी पर हो। इसके लिए तो हम आकाशवाणी परिवार को और भी बधाई देना चाहेंगे और 90 साल में तो बधाई स्पेशल होगी। जब 8 जून को आपका 90 वर्ष पूरा होगा तो आपके लिए बधाइयों का अंबार चलेगा, पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग आपको बधाई देंगे।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए देशगान।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में, सुनिए हेमलता को। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे। गीत निदा फाजली के हैं, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

प्लीज़ सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम है विवाह। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए सुनते हैं श्रोताओं के द्वारा व्यक्त विचार। लिए सुनिए डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दी गई बधाई संदेश।
1: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रति आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरूने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका अद्वितीय है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भारत की विविध बोलियों लोक कलाओं सांस्कृतिक संगीत साहित्य को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने में इसका योगदान अतुलनीय है। इसने हमारी क्षेत्रीय पहचान को वैश्विक मंच दिया है। डिजिटल क्रांति के आधुनिक दौर में भी आकाशवाणी ने खुद को निरंतर प्रासंगिक बनाए रखा है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता राष्ट्रभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म काश में सुनिए किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एनडीए के 9 जबकि महागठबंधन के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा है। भाजपा की ओर से भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना नामांकन भरा। वहीं जदयू की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने नामांकन पर्चा भरा। एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इधर राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश में कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल माध्यमों से लोगों

तक सीधे और पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंच रही है। इससे लक्षित वर्ग तक अधिकतम लाभ पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। कार्य क्षमता बढ़ी है और शासन में भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देव मोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। कानून साज काउंसिल की 9 सीटों के लिए होने वाले 2 साला इंतखाब और 1 सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए आज नामजदगी का आखिरी दिन है। NDA के 9 जबकि अजीम इत्तेहाद के 1 उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। BJP की जानिब से भोजपुरी अदाकार और गुलकार पवन सिंह, संजय म्यूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं JDU की जानिब से वजीर सेहत निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। NDA उम्मीदवारों की नामजदगी में वजीर आला सम्राट चौधरी, लोजपा आर के सरबराह चिराग पासवान समेत NDA के कई सीनियर लीडरान शामिल हुए। इधर RJD उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है। जरूरत होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम में वोटों की गिनती होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मफाद में हुकूमत के 12 बरसों के तरक्याती सफर की निशानदेही की है। जनाब मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान मुल्क कई तब्दीलियों का गवाह बना और गरीब फलाह और महरूम तबके इन तब्दीलियों के फोकल प्वाइंट रहे। वजीर आजम ने कहा कि जन धन खाता, बराह रास्त फायदे की मुंतकली, शफाफ भारत मुहिम, PM रहायश मंसूबा, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का मकसद लोगों के लिए इज्जत व वक़ार और मौके को यकीनी बनाना रहा। गरीबों की तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि बराह रास्त फ़ायदे

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले

0: 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।

0: न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना

0: नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकार तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम है मिलन। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लिए सुनिए लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों को। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म साथी में सुनिए मुकेश और सुमन कल्याणपुर को।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए सुनते हैं श्रोताओं के द्वारा व्यक्त विचार। लीजिए सुनिए दीपक प्रकाश मान्य, पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार का बधाई संदेश।
1: नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सब में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सब के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म मोहब्बतें में। फिल्म मोहब्बतें में सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पर। उस समय तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं।
1: और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगे निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर

0: बहुत अंदर तक जाएगा. तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
0: किसी ने बताई थी.
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए. और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का. लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है, वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं, और कहीं पर रेत धसकती है. और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना तक. और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, वो गाड़ियां फंस जाती हैं, और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं. तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में. और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे.
0: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेस करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
0: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है.
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा. मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
0: संदेश देता.
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया, तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है. तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए. वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करें, इसका ध्यान.
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है. और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं. तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी. और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे. अब क्या करें, हम
0: अब गीत सुना दीजिए.
1: चलिए सुनते हैं गाना.

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ पे प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजें। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बता
0: ही दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप

0: लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे, सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया। जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

चौंक पड़े। देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं। फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई उनकी तरफ मुंह उठाकर।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रिकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और

0: कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है, हम सब
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी, और नूपुर बज उठते हैं, उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं, इनकी स्वच्छता और सुरक्षा

0: हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को, एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया। बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले,
0: आपने मुझे बोल ही नहीं दी, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ।
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया,
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात जान बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहां हमें बोलना नहीं चाहिए कहां बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने बात लिखकर के।
0: और हमारी सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलत फहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे

बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी

0: बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है। तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोले और चिंता में और गुस्से में न बोले। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती हैं। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुँचाऊँ।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: ही बना के खिलाया जाता है ना, अभी तो नहीं बनाया नहीं जाता है
1: जी, वो तो मैं जानती हूँ। आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी। आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए, और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच अमचूर, और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए, और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाए।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1/6 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें, अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनिए।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम कल
1: ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते
0: ये
1: हैं।
0: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूँ, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है। और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है।

0: मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते। इसके लिए ये जो मरीज होते हैं, ये पूरी तरह डायबिट इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते। इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था, लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है, जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं, वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है, तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं, इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं, वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं, तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है, वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं, फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच, मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है, वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है, वो 126 या उससे ज्यादा हो, तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है, या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है, लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है, तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है, उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है।

0: थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
1: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
0: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं? टाइप टू मरीज है ये।
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है, या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है।
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी
1: हैं।
0: कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा

0: दिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है। ये आप देखते हैं,
1: सही
0: पूरा
1: बात।
0: हिस्ट्री मालूम पड़ता है।
1: यस,
0: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें जैसे कि मैंने कहा पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं, ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: राइट पेशेंट्स
0: वो
1: को
0: दूर हो
1: बहुत
0: जाता है।
1: टेंशन होती है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं, मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं या फिर बस थोड़ी देर के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या से ब्रेक लेकर रेडियो सुन रहे हैं तो युवानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया।
0: प्रिया, कभी कभी मुझे लगता है कि आज के युवाओं की जिंदगी भी किसी स्मार्टफोन जैसी हो गई है।
1: अरे वाह, वो कैसे आदित्य?
0: सुबह अलार्म से शुरुआत, दिन भर अपडेट, नोटिफिकेशन, असाइनमेंट, मीटिंग, सोशल मीडिया, करियर की चिंता और फिर रात में अगले दिन की तैयारी।
1: बिल्कुल सही कहे आदित्य। और इन सब के बीच हम अक्सर रुककर यही सोचना भूल जाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में कितनी दिलचस्प बातें हो रही हैं और हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं।
0: प्रिया, यही तो काम करता है युवानी। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन, समाज और भविष्य से जुड़े होते हैं।
1: और आज का दिन तो बेहद खास है आदित्य, पता है आपको, क्योंकि आज है आकाशवाणी के पूरे 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 8 जून कई महत्वपूर्ण विषयों और विशेष दिवसों को समर्पित है। इसलिए आज का युवानी ज्ञान, जागरूकता, दोस्ती, तकनीक और मनोरंजन का एक शानदार संगम बनने वाला है।
0: तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महासागरों की जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं लेकिन हमारी हर सांस से उनका सीधा संबंध है।
1: जी हाँ दोस्तों, विश्व महासागर दिवस। आज विश्व महासागर दिवस है और इसके अवसर पे हम जानेंगे कि आखिर समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार ही नहीं बल्कि पृथ्वी के जीवन का आधार क्यों है।
0: फिर आएगा तकनीकी सोमवार और सच कहें तो आज का युवा तकनीक से अलग रह भी नहीं सकता।
1: बिल्कुल आदित्य, और हम देखते हैं कि अधिकतर मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल दुनिया, इन सब ने हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है।
0: प्रिया, इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की, क्योंकि जिस दिमाग से हम सपने देखते हैं, फैसले लेते हैं

0: हैं और अपने लक्ष्य तय करते हैं, उसका स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है।
1: और फिर बारी होगी दोस्ती की, नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे। और इसके मौके पर बात होगी उन दोस्तों की जो कभी हमारी नोटबुक बचाते हैं, तो कभी हमारी सीक्रेट्स, और कभी कभी तो हमारी पूरी इज्जत भी।
0: सही कहा आपने, कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें दोस्तों के साथ ही बनती हैं।
1: कार्यक्रम में आगे फिल्म संगीत भी होगा आदित्य, जो दोस्तों के सफर को और भी सुरीली बनाएगा।
0: साथ ही कैरिबियन अमेरिकन HIV एड्स अवेयरनेस डे के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता और वैज्ञानिक सोच पर भी चर्चा करेंगे।
1: और अंत में कुछ होंगे रोचक तथ्य, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे अरे यह तो हमें पता ही नहीं था।
0: तो दोस्तों, अगले कुछ समय के लिए पढ़ाई, तनाव और भागदौड़ से थोड़ा सा विराम दीजिए
1: और जुड़ जाइए हमारे साथ एक ऐसे सफर में जहाँ जानकारी भी है, प्रेरणा भी है, मनोरंजन भी है और युवाओं की आवाज भी।
0: शुरुआत करते हैं आज के युवानी की,
1: क्योंकि सीखना तब और मजेदार हो जाता है जब उसमें बातचीत साथ हो। तो दोस्तों, बातें हम करते रहेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको आज का यह प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे दिल का जो हाल है फिल्म बेशरम से गायक अभिजीत की आवाज में।
1: चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे की। प्रिया, एक सवाल पूछूं?
0: पूछिए, लेकिन ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिसका जवाब गूगल भी ढूंढता रह जाएगा।
1: अच्छा बताइए, पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है?
0: मुझे लगता है कि लगभग 70%।
1: बिल्कुल सही, और इसी वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है।
0: तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आज है दिन सोमवार और आज है डेट 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य महासागरों के महत्व, उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना।
1: इस साल विश्व महासागर दिवस 2026 का थीम पुनर्कल्पना। हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध, यानी रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन है। बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है, और दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होती है।
0: मतलब आदित्य, कि हम हर दूसरी सांस के लिए किसी न किसी रूप में महासागरों पर ही निर्भर हैं।
1: बिल्कुल, यही नहीं, महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: तो दोस्तों, विश्व महासागर दिवस की शुरुआत आपको अगर बता दूं तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट में प्रस्तावित की गई थी।
1: और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे घोषित किया था।
0: लेकिन आदित्य, चिंता की बात यह है कि हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंच रहा है।
1: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में बनने वाले प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा अंततः समुद्रों तक पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों को भारी नुकसान होता है।
0: तो जरा कल्पना कीजिए, एक कछुआ प्लास्टिक बैग को जेली फिश समझकर खा लेता है और उससे उसकी जान चली जाती है। ये
1: प्रिया
0: कितनी दुख की बात है ना
1: प्रिया,
0: आदित्य।
1: इसीलिए आज के युवा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाकर महासागरों की रक्षा में योगदान दे सकते हैं।
0: और याद रखिए, भले ही आप समुद्र के किनारे न रहते हो, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जो आदतें हैं वो महासागरों को प्रभावित करती हैं।
1: तो इस वर्ल्ड ओशियंस डे पर संकल्प लें कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे।
0: बिल्कुल आदित्य। तो दोस्तों, अब हम ओशियन डे पे बात तो कर लिए, लेकिन इसके बाद आपको सुनवाते हैं आज का यह प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी ये सुन रहे थे आप प्यारा सा गीत जिंदगी से, जिसे आवाज़ दी है शफ़क़त अली ने फिल्म राज थ्री से। चलिए अब अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं।
1: दोस्तों, अब हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर हम सभी को ध्यान देना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज है 8 जून और इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे।
0: दोस्तों, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीव परिवार और हमारे भविष्य से जुड़ा है।
1: तो बिल्कुल आदित्य, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को इस बीमारी के बारे में बताना और मरीजों की मदद करना।
0: तो दोस्तों, इस साल यानी कि 2026 में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम है अ क्लोजर लुक, अर्थात एक और गहराई से

0: नजर। यह थीम हमें ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती संकेतों को गंभीरता से लेने और समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करती है।
1: आदित्य, अक्सर लोग सिर दर्द, चक्कर आना, देखने में बदलाव या भूलने की समस्या को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यही संकेत किसी गंभीर समस्या जैसे ब्रेन ट्यूमर की ओर इशारा कर सकते हैं। और इस वर्ष की थीम का यही उद्देश्य है कि हम इन संकेतों को अधिक ध्यान

0: सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसर युक्त नहीं होते, लेकिन हाँ, चाहे ट्यूमर किसी भी प्रकार का हो, यदि वह मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों पर दबाव डालता है तो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
1: दोस्तों, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में जर्मनी की जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, रोगियों और उनके परिवार को समर्थन देना तथा बेहतर अनुसंधान और उपचार के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। आज यह दिवस दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है।
0: प्रिया, क्या आप हमारे श्रोताओं को ब्रेन ट्यूमर के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में बता सकती हैं?
1: बिल्कुल आदित्य, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण व्यक्ति और ट्यूमर की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जिन पर ध्यान देना हमें बेहद जरूरी है। जैसे लगातार बार-बार होने वाले सिर दर्द, मिर्गी जैसे दौरे पड़ना और देखने की क्षमता में थोड़ी बदलाव आना, सुनने में कठिनाई, संतुलन बिगड़ना, उल्टी या स्मृति में कमी आना, व्यवहार या व्यक्तित्व में बदलाव तथा शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नापन लगे। यदि ऐसे लक्षण लगातार बने रहे तो हमें चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए।
0: प्रिया, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर का संकेत नहीं होता, लेकिन यदि सिर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, असामान्य हो या अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे रहा हो तो जांच कराना आवश्यक हो जाता है।
1: बिल्कुल आदित्य, और जागरूकता का अर्थ भी यही होता है कि डर पैदा नहीं करना, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार प्रारंभिक पहचान यानी अर्ली डिटेक्शन पर जोर देते हैं। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलता है, उपचार की संभावनाएं भी उतनी बेहतर हो सकती है ना आदित्य?
0: बिल्कुल श्रोताओं, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हमें यह संदेश देता है कि जागरूकता ही सुरक्षा का पहला कदम है। अपने स्वास्थ्य संकेतों को समझे, किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें।
1: तो दोस्तों, आइए इस वर्ष की थीम अ क्लोजर लुक को अपने जीवन में अपनाएं, अपने स्वास्थ्य पर एक और गहराई से नजर डालें, अपने परिवार और समाज को जागरूक करें तथा ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और सहयोग का भाव रखें।
0: तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सजग रहें और जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो प्रिया, बातें तो बहुत सारी हुई, अब अपने श्रोताओं को क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुनवाएं?
1: बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आज का यह प्यारा सा ट्रैक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों अब हम बात करते हैं नए विचारों, नई तकनीकी और उनके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं तकनीक की। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है।
4: बिल्कुल प्रिया, आज हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और यहाँ तक कि कई मशीनें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से काम कर रही हैं। लेकिन जितनी तेजी से यह तकनीक बढ़ रही है, उतनी ही जरूरी हो गई है एक सवाल की, क्या यह तकनीक सही और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल हो रही है।
3: बिल्कुल सही क्वेश्चन है आदित्य, यही वजह है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं AI एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी पे। आसान शब्दों में कहे तो इसका मतलब है तकनीक का ऐसा इस्तेमाल जो सुरक्षित हो, न्यायपूर्ण हो और इंसानों के हित में हो।
4: सही कहा आपने, आज AI हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बिना जिम्मेदारी के किया जाए तो यह कई समस्याएं पैदा भी कर सकती हैं।
3: और दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, अगर किसी AI सिस्टम में गलत डेटा डाला गया हो तो उसका निर्णय भी गलत हो सकता है। मान लीजिए किसी नौकरी के चयन में AI का उपयोग हो रहा हो और डेटा पक्षपाती हो सकता है, तो सोचिए कुछ भी हो सकता है, कुछ योग्य उम्मीदवारों को अवसर ही ना मिले।
4: इसीलिए AI एथिक्स कहती है कि तकनीक को बनाते समय और इस्तेमाल करते समय कुछ मूल सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। पहला सिद्धांत है फेयरनेस यानी निष्पक्षता,
3: और यानी कि तकनीक किसी के साथ भेदभाव न करे, न जाति, न लिंग, न भाषा और न ही किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर।
4: दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसका मतलब है कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि AI सिस्टम कैसे काम कर रहा है और उसके निर्णय का आधार क्या है।
3: और

0: तीसरा है आदित्य अकाउंटबिलिटी यानी जवाबदेही। अगर एआई की वजह से कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। तकनीक के पीछे इंसान ही होते हैं, इसीलिए जवाबदेही भी इंसानों की होती है।
1: दोस्तों, एक और अहम पहलू है प्राइवेसी यानी निजता की सुरक्षा। आज हम इंटरनेट और ऐप्स पर बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा साझा करते हैं, जैसे हमारी तस्वीरें, लोकेशन और कई निजी जानकारियाँ।
0: और अगर इस डेटा की सुरक्षा नहीं की गई तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए ही हो। तो आदित्य, हम इस पे और भी बातें आगे करेंगे, लेकिन पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं आज का यह पहला ट्रैक।

0: दोस्तों हम सुन रहे थे फिल्म जब वी मीट से श्रेया घोषाल की आवाज में यह प्यारा सा गीत। अब चलते हैं, बात कर रहे थे एआई एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो आगे हम बात करते हैं आदित्य कि ये एक ऐसा बात हमें समझना जरूरी है कि एआई कोई खुद निर्णय लेने वाली स्वतंत्र शक्ति नहीं है। यह केवल उतना ही अच्छा या बुरा हो सकता है जितना अच्छा या बुरा डेटा और प्रोग्रामिंग उसमें डाली गई हो।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए एआई के विकास में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज कई देशों और संस्थाओं ने एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए दिशा निर्देश और नीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि तकनीक इंसान के लिए लाभकारी बने, नुकसानदायक नहीं।
0: और आदित्य, युवाओं के लिए भी इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आने वाले समय में वही तकनीक का निर्माण करेंगे और उसका उपयोग कैसे करेंगे और समाज को दिशा कैसे देंगे, ये उन पे निर्णय है।
1: बिल्कुल, अगर युवा तकनीक को केवल सुविधा के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे तो भविष्य की दुनिया ज्यादा सुरक्षित और बेहतर होगी।
0: सोचिए दोस्तों, अगर एआई का सही उपयोग हो तो यह कितनी समस्याओं का समाधान कर सकता है ना। और जैसे बेहतर चिकित्सा सुरक्षा सुविधा, स्मार्ट शिक्षा प्रणाली, पर्यावरण की निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसी कई समस्याओं का वो निवारण कर सकती है।
1: प्रिया, लेकिन अगर इसका उपयोग गलत इरादों से किया जाए, जैसे फेक न्यूज़ फैलाने में, साइबर अपराध में या लोगों की निजता का उल्लंघन करने में, तो सही यही तकनीक समाज के लिए खतरा भी बन सकती है।
0: इसीलिए आदित्य, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि तकनीक का असली उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि उसे नुकसान पहुंचाना।
1: रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि हम तकनीक का विकास इस सोच के साथ करें कि वह मानव मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के अनुरूप हो।
0: दोस्तों, तकनीक जितनी शक्तिशाली होती जा रही है उतना ही जरूरी हो गया है कि हम उसके उपयोग में समझदारी और संवेदनशीलता दिखाएं।
1: क्योंकि आखिरकार तकनीक मशीनें बनाती हैं, लेकिन उनके पीछे सोच इंसानों की होती है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो तकनीक भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।
0: तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसी तकनीकी दुनिया की कल्पना करें जहां नवाचार हो, प्रगति हो, लेकिन साथ ही नैतिकता और जिम्मेदारी भी हो।
1: बिल्कुल सही बात है प्रिया, तकनीक का उपयोग करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और इसी संदेश के साथ हम आपको ले चलते हैं आज की अगले ट्रैक की ओर, सुनवाते हैं आपको यह प्यारा सा गीत।

0: गीत गाने की बोल थी क्यों हो गया ना, जिसे आवाज दी है साधना सरगम और उदित नारायण ने।
1: आदित्य, अब हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह सुनकर शायद हर श्रोता के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। पता है कौन सी बात?
0: क्योंकि अब बात हो रही है दोस्तों की।
1: और दोस्ती ऐसी चीज है ना जिसके बिना युवा अवस्था अधूरी सी लगती है।
0: हर साल 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और धीरे धीरे यह दिन दुनिया के कई हिस्सों में लोकप्रिय हो गया।
1: और दोस्त वो होता है आदित्य जो आपके अच्छे समय में ताली बजाए और बुरे समय में कंधा दे।
0: सही कहा आपने, परीक्षा का तनाव हो, करियर की चिंता हो या जीवन की कोई चुनौती, एक अच्छा दोस्त बहुत बड़ा सहारा बन जाता है।
1: और आज के डिजिटल दौर में हजारों फॉलोअर्स होना आसान है, लेकिन सच्चा दोस्त मिलना अभी भी खास बात है।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि युवाओं के लिए दोस्ती सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।
1: और कई शोध बताते हैं आदित्य कि मजबूत सामाजिक संबंध तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं।
0: और दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें उम्र, भाषा और पृष्ठभूमि जैसी सीमाएं मायने नहीं रखती।
1: दोस्तों, आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपने किसी पुराने दोस्त को फोन कीजिए और सिर्फ इतना कहिए, धन्यवाद तुम मेरे जीवन में हो।
0: हो सकता है आपका वही फोन किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना दे।
1: और अगर किसी दोस्त से नाराजगी है तो आज उसे खत्म करने का भी अच्छा अवसर है,
0: क्योंकि दोस्ती का रिश्ता जीवन के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। दोस्तों, अब पेश है अगला ट्रैक।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म युवराज से गायक बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज में यह प्यारा सा गीत।
1: प्रिया, अब बात करते हैं कैसे विषय की जो स्वास्थ्य, जागरूकता और मानवता से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ आदित्य, 8 जून को कैरिबियन अमेरिकन एचआईवी एड्स अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है।
1: इस दिवस की शुरुआत अमेरिका में कैरेबियाई मूल के लोगों के बीच एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।
0: दोस्तों एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर करता है।
1: जबकि एड्स यानी अक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम एचआईवी संक्रमण के उन्नत चरण को कहा जाता है।
0: दोस्तों आज विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएनएआईडी एड्स के अनुसार समय पर जांच और उपचार के माध्यम से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति लंबे समय और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
0: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताया आपने आदित्य, लेकिन समस्या तब होती है ना जब जानकारी की कमी और सामाजिक भेदभाव लोगों को जांच और उपचार से दूर कर देता है।
1: यही कारण है कि दुनिया भर में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
0: हालिया के आंकड़ों के अनुसार आदित्य, दुनिया में करोड़ों लोग एचआईवी के साथ जीवन जी रहे हैं और उपचार सुविधाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है।
1: आज युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सही जानकारी प्राप्त करना और अफवाहों से बचना।
0: दोस्तों एचआईवी सामान्य बातचीत, साथ बैठने और हाथ मिलाने या भोजन साझा करने से नहीं फैलता है।
1: यह जानकारी जितनी अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही भेदभाव कम होगा।
0: और यही दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है, जागरूकता, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक सोच।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म आशिकी 2 से ये प्यारा सा ट्रैक। प्रिया, अब वक्त हो चला है अपने श्रोताओं को कुछ मज़ेदार रोचक तथ्यों से रूबरू कराने का। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य और ताज़ा खबरें जो आपके ज्ञान को एक नई उड़ान देंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत के एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान से। जी हाँ दोस्तों, भारत का गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और खास बात यह है कि अब इसमें आम नागरिकों को भी अंतरिक्ष में भेजने की योजना बताई जा रही है।
0: बिल्कुल प्रिया, इतना ही नहीं, यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय होगा।

0: अब सिर्फ वैज्ञानिकों ही नहीं बल्कि आम लोगों लोग भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। सोचिए कितना रोमांचक होगा।
1: बिल्कुल, तो घड़ी ने किया है इशारा दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
0: तो दोस्तों आज का सफर यहीं तक, लेकिन उम्मीद है कि आज की बातें आपको ज्ञानवर्धक लगी।
1: और आज हमने महासागरों की विशाल दुनिया को समझा, तकनीक की नई संभावनाओं पर चर्चा की और मस्तिष्क स्वास्थ्य के महत्व को भी जाना। और इतना ही नहीं दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्तों को भी याद किया और साथ में तो फिल्म संगीत का आनंद लिया ही। तो अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। हमें इजाजत दीजिए, रेडियो दोस्त
0: आदित्य
1: और प्रिया को नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: युवानी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है भोजपुरी कार्यक्रम आरती।
1: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।

आरती सुनने वाला हमारे सवन सुनिहार लोगिन के राउर विनिता के प्रेम भरा नमस्कार। हर मेसिनियन आज दिन सोमवार हम फिर से प्रस्तुत भेल बनी राउर इहे अपन मन पसंद कार्यक्रम आरती के लेके। और आज हो नीमन नीमन जानकारी भरल चर्चा के जौरी हम सुनवाएम रोआ सभी के कुछ नीक नीक लोकगीत कमलेश पासवान जी से। और इहे बीच में सुनम सभी एगो काव्य पाठ डॉक्टर रघुनाथ उपाध्याय जी से। लेकिन उससे पहले हम रुआ सभी के आज के तारीख जो कुछ खास बा ओकर याद दिलाए। आ उ कौन खास तारीख है काहे कि आज बरिस 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से आज हुए के तारीख में मैंने 8 जून के आकाशवाणी के जन्म भइल रहे। बानु खास दिन आज एकर नाम जोन बाव बाद में ऑल इंडिया रेडियो रखाए और एकरा के ओहू से नीक नाम देल गईल बरिस 1956 में आकाशवाणी मने आकाश से आवे वाला आवाज। बहुजन हिताए बहुजन सुखाए के मंत्र लेके चलल रेडियो आज वो हर भारतीय के दिल के सबसे भरोसेमंद आवाज बनल बा। हमरा आजो याद पड़ेला उबेर जब गांव के घर में उसरा में रेडियो बजत रहे तो पूरा गांव जुट जात रहे। धीरे धीरे समय बीतल तकनीक बढ़ल टीवी अलक आ आज बेरा ऐसन बा कि हाथे हाथे मोबाइल बा। लोगिन में रेडियो के लेके उत्साह कम देखे के भेटाए लागल। उ पहले के जमाना रहे कि जब भारत पाकिस्तान के मैच के कमेंट्री होकत रहे तो लागत रहे कि एकदम आवाज से चारों ओर एकदम कौन घड़ी के रोमांच रहत रहे कि कहल नहीं खे जा सकत शब्द में। लेकिन उत्साह आज के समय में जरूर कम भेटा लेकिन तैयो रुआ सभन के जान के हैरानी हो कि आज पूरा देश में 591 गो रेडियो स्टेशन बा आ देश के 98% आबादी एकर आवाज के सुन रहल बा। हमनन के भोजपुरी सहित 23 गो भाषा 146 गो बोली में एकर सभन कार्यक्रम आवेला। एकर मतलब ई भई कि केहू कतहू रहे आकाशवाणी सभी के अपन माटी से जोड़ के राखेला। बाकी ई एकदम मत सोची के हूँ कि आज आकाशवाणी पुरान भ गए अब तो डिजिटल भ गई बा। मोबाइल में न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करी आ देश दुनिया के

कौनो कोना में बैठ के लाइव सुन ली। और अब तो यूट्यूब के जरिए भी हमने इनके नयका पीढ़ी से जुड़ल बा। आज वो कौनो बाढ़ सुखाड़ चाहे चक्रवात आवेला तो भले ही मोबाइल के टावर फेल हो जाए, लेकिन आकाशवाणी हमने इनके सबसे सच्चा भरोसेमंद साथी बन के सही सूचना देला। तो चली आकाशवाणी के 90 साल के शानदार बेमिसाल ऐतिहासिक सफर के हमने के पूरा आकाशवाणी परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई बा। आ अब रउआ सबन के नीक बात के बाद हम कहे ना एगो नीक लोकगीत भी सुनवाइए दी। तो आई सुनी सबे अब ई लोकगीत कमलेश पासवान जी के आवाज में।

0: बहुत निमन इनकर लोक भजन लागल ह। आगे भी ऐसने नीक गीत हम रुआ सबन के जरूर सुनवाएं कमलेश पासवान जी से, लेकिन देखी हम हमेशा रुआ सबन से कहत रहिला कि गर्मी बहुत हलकान करत बा, तो ऐसन में बहुत जरूरी बा कि रुआ लोगिन आपन आ आपन परिवार के ख्याल राखी। ख्याल रखे खातिर कोनो बहुते मेहनत चाहे पैसा खर्चा करे के जरूरत थोड़ी बा, बस आपन खान पान के सुधारे आ ओह पर ध्यान देवे के पड़े। आ हमहू ये बात के जानत नहीं कि रुआ सबन के सभी कुछ पता बा कि एह मौसम में का खाए के चाही या का ना, तब तो तनिका जीव के लालच में पड़ के आदमी अपन स्वास्थ्य से ही खिलवाड़ कर लेलन। लेकिन सुन ले बनेनु कि जान बा तबे जहान बा, ऐसे रुआ सभी जहान के फेरा में मत पड़ी, जान पर ध्यान दें। जीव के तनिका चटक मटक तेल पकौड़ी छानल बघारल चीज से दूर राखी आ स्वास्थ्य के तंदुरुस्त रखे वाला खाना खाए पर ध्यान दें। आ तंदुरुस्त रहे खातिर तरबूजा खरबूजा खीरा ककड़ी से बाजार पटाइल बा, बस रुआ के घर लाके खाए के जरूरत बा। बेल अभी के मौसम में सभी केहू जानता कि पेट के ठंडाई ले राखेला, ऐसे दोपहरिया में ओह बेल के शरबत बना के पीही सब है। बाहर निकलला पर पानी के बोतल जरूर अपना साथे रखें, काहे कि तरास लगला पर पानी के दुए घूंट अमृत नियन बुझाला। आ पानी के मात्रा भी देह में बनल रहल जरूरी होला, तो छोट मोट बात पर ध्यान दे के हमने नए मौसम में स्वस्थ रह सकता नहीं जा। आना तो डॉक्टर तो बैठले पर अपन आला गर्दन में टांग के बस एगो हरियर का नोट खर्चा करी आ दू घंटा उनकर दुआरी पर बैठी राउड नंबर आई तो बुलावल जाई। लेकिन एहन ऊ बात बा कि हम ऐसा एकदम ना चाहम, उहे हरियर का नोट रुआ खाए पिए पर खर्चा करी आ हरियाइल रहें। मौसम के तो आवे जाए के काम लागले बा, बस हमने इनके जरूरत बा तनिका परहेज से रहे के। गढ़वन खाए पिए से बढ़िया बा कि उहे चीज खाइल जाओ जे पेट के तरी बनावले राखे। दही मट्ठा हमने इनके ये गर्मी में नुबेसी काम करेला, प्याज नींबू मिर्चाई धनिया पत्ता पुदीना डाल के मस्त बड़का गिलास से एक गिलास सतुआ घोर के पी लेवल जाओ घर से बहरा जाए से पहले, तो मन तो ऐसे ही तरी आयल रही। आ रहल सवाल एकरे साथ तनिका पहरावा और भी ध्यान देवे के, तो हल्का रंग के कपड़ा पहनी माथा ढक के चली मुंह तूप के चली। गमछा अगर भाई लोग बारे बंधु लोग तो गमछा रखस कांधा पर बहुते काम आवेला। हमने भोजपुरिया भाई लोग इन खातिर सच पूछी तो गमछा खाली माथा रखे के काम ना आवे, जहाँ मन बा तनिका ओकरा के भिंगा के देह हाथ पोछलो जा सकता, देह में ठंडा बनवले रहेला। तो सब जानकारी के साथे साथे आपन देह के ख्याल रखल रउए हाथ में बा, ऐसे रउआ सबन अपन अपन परिवार में स्वस्थ से आनंद रही है लूक लहर के दिन में। आ चली अब हम रुआ सभी के सुनवाई एगो काव्य पाठ डॉक्टर रघुनाथ उपाध्याय जी से, तो सुनी सभी ए काव्य पाठ।
1: हमार पहली कविता बा गांव कहवा गई कुछ बुझात नहीं खे, गांव कहवा गई कुछ बुझात नहीं खे, लिखल चा

नहीं के गौआ बदल के अब शहर हो गई ले कुइया पोखरी के पानी जहर हो गई ले।

भइल अपना बैल सपना शहर त शहर गाँव में घटे रोज।

झगड़ा भइल रगरा, झगड़ा भइल रगरा, अब फरियात नइखे लिखल चाही, हम गीत पर लिखात नइखे। गाँव कहवा गइल कुछ बुझात नइखे लिखल चाही, हम गीत पर लिखात नइखे। हमार अगली कविता बा, ए गोदियना तू नेह के जरावत रहो, ए गोदियना तू नेह के जरावत रहो, रोशनी ठामे ठामे पसर जाए दम, कांट कुश से भरल हर डगर में सुनम, कांट कुश से भरल हर डगर में सुनम, आजू चंदन के खुशबू बिखर जाए दौ, बाटे मजहब न दिल के दिल से कहीं, सूखे संगम न अबद धरा पर कहीं, घोरे कोई जहर ना मन में कभी, आजू धरती पर अमृत टघर जाए दम, टूट जाए लड़ीना।

नित्य हरदम निभावत रह। हर दामन खुशी से तू भर जाए दौ, एगो दियना तूने के जरावत रहो।

भर के। बहार बन के पतझड़ निभावत रह, हर कली हर सुमन के समर जाए दो।

हर कली हर सुमन के समर जाए दो, एगो दियना तुने के जरावत रहो, रोशनी ठामे ठामे पसर जाए दो, रोशनी मिट न जाए एक पल के लिए।

रहो। चान के आज धरा पर उतर जाए दो, एगो दियना तूने से

रहो बांसुरी तू प्रेम के बजावत रहो, हर लम्हा खुशी से गुजर जाए दाओ, ए गोदियना तूने के जरावत रहो, रोशनी ठामे ठामे पसर जाए दो, कांट कुश से भरल हर डगर में सुना, आज चंदन की खुशबू बिखर जाए दो। हमार अगली कविता बा, हर गली अन्हार हो गईल, हर कली अब खार हो गईल,

हर गली अन्हार हो गइल बा चुप हर डगर, हो गइल बा चुप।

आज फुहर सिंगार हो गइल, हर गली अनार हो गइल। डोली चढ़ के दुल्हन जब चलल, डोली चढ़ के दुल्हन जब चलल, लुटेरा अब कहार हो गइल, हर गली अनार हो गइल। डर से कांपेला दर्पण देखी के चेहरा, डर से कांपेला दर्पण देखी के चेहरा, आज आईना के हार हो गइल, हर गली अनार हो गइल। बाटे बोलबाला झूठ के हर जगह, बाटे बोलबाला झूठ के हर जगह, आज सच गुनहगार हो गइल, हर गली अनार हो गइल, हर कली अब खार हो गइल। आज बिगड़ल हवा से चमन।

अभी अभी हमने इनके सुने थे हिजा काव्य पाठ रघुनाथ उपाध्याय जी से। आ एक इनका बहुत ही धन्यवाद बा। देखी कुछ और जानकारी भरल बात अगर हम करी तो हमने बहुत ही नीक हमने बहुत ही नीक तरह से बात के जानता नहीं कि कुछ कुछ ऐसा चीज बा हमने इनकी जिंदगी में जेकरा बिनु लागेला कि जिंदगी रुक गई। आ वो सबन चीज के दाम बढ़ेला तो सीधे पॉकेट पर डाका डलाला। आ वो चीज का पेट्रोल डीजल आ हमने इनके चुल्हानी में रखल गैस। एक खातिर बहुत जरूरी बा कि हमने सबे सबन के इस्तेमाल इस तरह से करी कि कुछ बचत हो सके। अब रोज सोचो तो कम कि हम कहल का चाहता नहीं कि कतहूँ घर से बाहर गाड़ी घोड़ा से मत जाई चाहे एक सांझ खाने मत बनाए ना। ऐसा हम भला सोचियो सकीला। हमार कहे के मतलब ई ह कि एकर एक तरह से इस्तेमाल कर जाओ जिससे एकर कम खर्च होके। जैसे बात अगर पहले हम गाड़ी घोड़ा के करें तो पेट्रोल डीजल खाते तो कुछ हो ना, बस गाड़ी के सही गति पर सही गियर में राखी। अब ओकरा के जबरदस्ती कड़ा गियर में गाड़ी खींचब तो तेल पानी नियन बही। वही तरह चौराहा पर अगर लाल बत्ती 30 सेकंड से बेसी के बा तो ओजा गाड़ी के बंद कर दही। हम देखी ला राह में आवत घड़ी कि ओजो कितना लोग स्टाइल मारे के फेरा में एक्सेलरेटर देवत रहलन, उहो से तेल बेसी खर्चा होला। हफ्ता में एक बेरी टायर के हवा जरूर देखवाई, काहे कि हवा कम रही तो इंजन पर लोड पड़ी आ तेल भी बेसी लागी। उहे तरह चुल्हानी में राखल गैस के खर्चा पर बताई तो बेसी कुछ हो नहीं के करे के। हमार दीदी चाची लोग इनके बस खाना बनावत करी कड़ाही में कुछ हो तोप के ढकना से बनाई, काहे कि तोपल रही तब बाप से खाए जल्दी सीझी और ही गैस बाची। अब बहुते बेरी ऐसा होला कि बर्तन में पहले ही से पानी रहेला तो ओकरा सुखावे में गैस जरेला। ऐसे ओइसन बर्तन के चूल्हा पर चढ़ावे से पहले ही कोनो साफ सूती कपड़ा से पोछ ली तब चढ़ाए तो जल्दी धिक जाये। अब बहुते बेरी ऐसा करेला हमने सभी की कढ़ाई कुकर चढ़ावला के बाद तरकारी काटे या लहसुन छिले बैठ जाइला। ई ना करे के चाहे, पहले ही से सभी तैयारी कर ली तब चूल्हा जराई। वह तरह अगर फ्रिज के सामान गर्मावे के बाद आधा घंटा पहले ओकरा के निकाल के राखी तब गर्माई। ऐसा छोट छोट आदत डाल के हमने पेट्रोल डीजल और गैस बचा सकता नहीं। आज एक पर जब कम भार पड़ी नू तो अपने आप रुआ के महीना के अंतावत आवत मन खुश हो जाए। इस सोच के कि हम इतना पैसा बचा लेनी आ मन खुश करे खातिर इतने ना हमारे काम रुआ लोगिन के गीतों नाद सुनावत रहला। तो सुनी सबे फिर उसे ई गीत।

योगी दिनकर बहुत निमन लागल है। एक आदि कमलेश पासवान जी के बहुत बहुत धन्यवाद। देखते देखत हम जाए के बेरा भगल ते मंगल कामना की जरूरी करो। सबन स्वस्थ सानंद रही अपन अपन परिवार में। तो देखी अब हमार मन राउर विनीता के निहोरा बा के हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

आरती, अभी आप ये भोजपुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण होगा। छह बजकर 10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 20 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आप सुनेंगे।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में अब भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ दिव्या से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब सबके भलाई खातिर सरकार के 12 साल के विकास यात्रा के रेखांकित कैले। श्री मोदी आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि ये दौरान देश कई गो बदलाव के साक्षी बनल आ गरीब कल्याण वंचित वर्ग ए बदलाव के केंद्र बिंदु में रहल। प्रधानमंत्री कहले कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन औरी आयुष्मान भारत नियर हर पहल के मकसद लोगन खातिर गरिमा आ अवसर सुनिश्चित करे के बा। गरीब के जीवन स्तर बेहतर बनाए में टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण भूमिका बा। वो कहले कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आ डिजिटल माध्यम से लोग तक सीधे आ पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंच रहल बा। ऐसे सही हकदार तक पूरा फायदा पहुंचल पक्का भइल बा। काम के रफ्तार बढ़ल बा और इस शासन में भरोसा भी बढ़ल बा। प्रधानमंत्री कहले कि गरीब कल्याण यात्रा हर आदमी के सशक्तिकरण औरी विकसित भारत के सच्चा सपना करे के एगो सामूहिक अभियान बन गइल बा। विधान परिषद के 9 सीट पर होखे वाला द्विवार्षिक चुनाव और एगो सीट खातिर होखे वाला उपचुनाव खातिर आज नामांकन के अंतिम दिन है। एनडीए के 9 जबकि महागठबंधन के 1 उम्मीदवार अपन नामांकन दाखिल कैले। भाजपा के ओर से भोजपुरी अभिनेता आ गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर आ शीला पंडित अपन नामांकन कैलो। वहीं जदयू के ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद नामांकन पत्र दाखिल कैलो। एने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी नामांकन पर्चा भरले। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ ही साथ एनडीए के कई गो वरिष्ठ नेता शामिल रहे लोग। उन्हें राजद उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह भी अपन नामांकन पत्र भरले। नामांकन वापस लेवे के अंतिम तारीख 11 जून है। जरूरत पड़ला पर इन्हीं सीट खातिर 18 जून के वोट डालल जाये और वही दिन सांझ के गिनती भी होगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 बरस पूरा हो रहल बा। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से के बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखल गए रहे। ये दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण के इतिहास में एगो खास मौका के रूप में दर्ज बा, जिससे पीढ़ियन तक देश के चेतना से जुड़े वाला वाणी के जन्म भइल। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के बड़ा तेजी से विस्तार भइल और इस साल 1956 में एकरा के आकाशवाणी नाम दिहल गए। आज आकाशवाणी के 591 गो केंद्र काम कर रहल बा, जैसे 23 गो भाषा और 146 गो बोली के कार्यक्रम के प्रसारण कल जाला। एकर पहुंच देश के 98% आबादी तक बा। आकाशवाणी के विदेश सेवा विभाग दुनिया भर में रह रहल भारतवासी के एक साथ जोड़े के विश्व के 100 से बेसी देश में भारत के आवाज पहुंचा रहल बा। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर चल के आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सबसे ऊंच मानक के पालन करके 24 घंटा सब प्रमुख भाषा और बोली में समाचार और समाचार कार्यक्रम के प्रसारण करेला। प्रदेश के मौसम में लगातार उमस भरल गर्मी के सिलसिला जारी बा। पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पूरा प्रदेश में सबसे गर्म जगह रहल। राज्य के 1-2 जगह पर हल्का बरखा भी दर्ज कैल गेल बा। मौसम विभाग कहले बा कि आज प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हिस्सा में 1-2 जगह पर पानी पड़े के संभावना बा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व जिला के 1-2 स्थान पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धूल भरल आंधी चले के साथ ही साथ बरखा होके के पूरा आसबा। पश्चिम चंपारण जिला के बलथर और भंगहा इलाका में अलग अलग कार्रवाई करके पुलिस कार पर लदल 111 क्विंटल से बेसी गांजा के साथ 2 गो तस्कर के गिरफ्तार कैले बा। उन्हें जिला के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ठगी

गिरोह के भंडाफोड़ करके 3 गो अंतरराज्यीय ठग के गिरफ्तार कैले बा। औरंगाबाद में फसिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास एगो पर्यटक बस और ट्रक के बीच भयल भीषण टक्कर में 3 गो पर्यटक के मौत हो गई, उन्हें 20 गो और पर्यटक घायल भेल लो, घायल में 8 गो के हालत गंभीर बनल बा। रोहतास नोखा थाना क्षेत्र के 70 बीघा गांव के पास एगो ऑटो और पिकअप गाड़ी के आमने सामने के टक्कर में एक आदमी के मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 गो और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भइल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मिस्टर आसिक फिल्म का ये प्यारा सा गीत कुमार शानू की आवाज में। सैफ अली खां के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

अलका याग्निक और कुमार शानू के स्वर में आइए सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर

0: सिर्फ तुम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिमबङ्गालराज्ये आयुष्मान् प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन CBSE बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता सन्दर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिन्ता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणं, स्वच्छ भारत अभियानं, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेऽपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन्नवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्यां राष्ट्रिय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् CBSE बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायाम् आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज

0: जलस्य स्वस्थपर्यावरणस्य च संरक्षणार्थं सर्वैः सहकार्यं करणीयम् इति तेन उक्तम्। क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः। क्रिकेट क्रीडायां भारतदलं अफगानिस्तान दलं एकया एव पर्यायया 300+ धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयं अभिलेखितवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते शोमा बहन।
0: और उदय भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है कि गर्मी की छुट्टी पड़ गई है और खूब घूमने निकल पड़े हैं
1: शोमा बहन, ये
0: ना।
1: बात तो सही बा कि जब छुट्टी होके तो घूमे में
0: हाँ।
1: बड़ा आनंद आवेला, और घूमे के बहुत सारा उद्देश्य
0: जगह।
1: भी होला।
0: हाँ।
1: कई बार ओकर उद्देश्य होला जानकारी लेवल, कई बार उद्देश्य होला कि तनी निकल जाइल जाओ बाहर की जेबा वो थोड़ा सा
0: अपना जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो यहाँ सुंदर सुंदर पहाड़ है, लोग अक्सर गर्मियों के दिनों में पहाड़ों की ओर जाते हैं कि जहाँ थोड़ी सी ठंडक मिले। लेकिन पहाड़ों के साथ साथ अगर हम लोग समुद्र की तरफ भी जाए तो उसकी अपनी एक अलग ही खूबसूरती है
1: हाँ,
0: ना।
1: ओकर ओकर ओकर आनंद कुछ और भी अलग होला।
0: बस पानी ही, समुद्र के किनारे खड़े होके बस आपको दिखेगा बस पानी ही पानी। और जब वो समुद्र के लहरें आती है ना दूर से, तो वो जो दृश्य होता है सचमुच बहुत आनंद कर देता है मन
1: निश्चित।
0: को।
1: और वो जे बा एक अपना साथ एक हलचल समेट ले, वो विशाल जलराशि ये एहसास करावला कि जीवन वैसे ही उथल
0: उथल
1: पुथल
0: पुथल।
1: उपेरे थपेरे से जूझता। और तब आदमी बड़ा एक ओकरा के वही हिसाब से देखला कि यही वास्तविक जीवन बा।
0: जीवन है, चाहे आप समुद्र की बात करें, महासागर की बात करें, या फिर अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं, तो वो ये भी एहसास कराता है कि आप अपने कदमों से, अपने पैरों से कितनी ऊंचाइयाँ धीरे धीरे, क्योंकि जीवन में भी अगर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे चढ़ेंगे तो आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। जो जल्दी करेगा, हड़बड़ करेगा, वो निश्चित ही
1: गिर जाए, गिर
0: गिरेगा।
1: जाए, गिर जाए।
0: तो सही सही बात आपने कही कि ये जितनी भी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, हमें अपने जीवन से जोड़ता है और कहीं ना कहीं कोई संदेश हम सभी को देता भी है।
1: निश्चित।
0: तो आज
1: और
0: हाँ
1: जैसन बात रुआ आरंभ में शुरू के नहीं है, आज हमने का बातचीत जरूर करे कि जे समुद्र बा, जे महासागर बा,
0: जी
1: रुआ तो याद होई लेकाई में हमने के पढ़ावल जाए, हमने के याद रहे कि
0: हाँ
1: कतना जे बा महाद्वीप बा, कतना
0: बिल्कुल
1: महासागर बा।
0: बिल्कुल।
1: और हमने के पढ़ावल जाए कि समुद्री विज्ञान के हिसाब से तो 7 गो महासागर कहल जाए,
0: हाँ
1: लेकिन मूल रूप से 5 महासागर हमने के पढ़ावल जाए। ओह बेरा जो नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक
0: हाँ
1: महासागर।
0: आर्टिक महासागर
1: तो
0: जी।
1: ये सब जो रहे, ये महासागर मतलब एक विशाल राशि, जो सागर से बर होके महा होके सागर, तब महासागर। तो आज ओकरा महत्व के बारे में हमनी के बातचीत करें, और आखिर ये महासागर जे बा हमनी के जीवन खातिर, हमनी के तो एक ओकर बात कहनी है कि महासागर देख के जे आदमी अपना जे चिंतन से और जीवन के दर्शन जे वहां से उठा के ले वाला वो बा, लेकिन जीवन खातिर, सामान्य जीवन खातिर वो
0: खातिर
1: कितना जरूरी बा, ओह बारे
0: जरूरी
1: में आज
0: बिल्कुल,
1: हमनी का जरूर चर्चा करें
0: क्योंकि
1: कि
0: आज 8 जून है, आज विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य ये भी है उदय भाई कि लोगों को जो महासागर है, जो समुद्र है, उसके महत्व के बारे में बताना, उनके संरक्षण के बारे में बताना, साथ ही साथ जो समुद्री पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। और हम सभी

0: जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है लगभग जिसमें 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है और जिसमें अधिकांश हिस्सा जो है समुद्रों का है।
1: देखिए, समुद्र जेकरा के हमने कहा समुद्र तो सागर ही भाई, महासागर के आज हमने बात करे कर रहल बने। महासागर जे बा ओकर योगदान कुछ अलग तरह से बा। एक तो पानी ओकर खारा बा, ये नसीद भाई के खारा पानी बा, तो बहुत बार ओकरा से हमने कहा ओकर उपयोग जे बा नमक बनावे
0: नमक
1: में तो
0: बनाने में
1: पहले
0: जी
1: होत रहे, लेकिन ओकरा से भी ज्यादा जीवन में रुआ देखी सबसे पहले जे मानव सभ्यता के विकास में जे परिवहन, जे समुद्री
0: परिवहन
1: परिवहन जे
0: जी
1: शुरू भेल, तो ओहमे महासागर सागर के बड़ा योगदान रहल। ओकरा माध्यम से परिवहन व्यवस्था जे बा, जब सड़क मार्ग हमनी के यहाँ
0: नहीं
1: बहुत ना
0: कम।
1: रहे,
0: हाँ
1: तो ओकरा माध्यम से जे बा हमनी के सामान एक दूसरा से दूसरा जगह बहुत व्यापार होके एक कोना से ओह कोना ले।
0: हाँ
1: आज भी विश्व स्तर पर देखें एगो छोट जगह जे बा वो इतना बड़ा मुद्दा बन गई बा कि वहाँ से ही जे बा बहुत जे हमनी के पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति हो रहा।
0: जी
1: तो जल परिवहन के महत्ता हमेशा से भी रहल बा और वो परिवहन के एगो बेहतर जे बा साधन रहल बा।
0: साथ बिल्कुल
1: तो महासागर वह रूप में भी, और दूसर का चीज़ है कि जीविकोपार्जन खातिर, जीविकोपार्जन में रुआ ये समझें कि हमने कि यहाँ जे जल जे विशाल जल राशि बा ओमे जे बा बड़ पैमाना पर लोग जे बा वहाँ से बहुत तरह के जिकड़े के
0: मछली
1: सी
0: बा
1: फूड,
0: हाँ सी
1: हाँ
0: फूड
1: तो
0: हाँ
1: मछली तो ओकर एक
0: हाँ
1: हिस्सा बा,
0: हाँ समुद्री व्यापार
1: हाँ, जैसे वो में से जे भोज्य पदार्थ हमनी का प्राप्त कर
0: प्राप्त
1: ले सामान्य तौर पर ओकरा के यही नाम से लोग जानेला, जो उन जे बा प्रोटीन से भी युक्त होला, तो ई जे बा भोज्य पदार्थ भी हमनी का बड़ पैमाना पर जे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होला वो हमनी का यहाँ से प्राप्त करी ले। और ई जे बा एकरा माध्यम से हमनी का शरीर में अपना प्रोटीन और जे बा दोसर जे आवश्यक पोषक
0: पोषक तत्व जो
1: तत्व
0: था
1: बा
0: हाँ
1: ओकर
0: हाँ
1: आपूर्ति सुनिश्चित करी ले।
0: बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है ना कि महासागर जो है पृथ्वी के फेफड़े के समान है, और आपने कहा है कि करोड़ों लोगों की जो आजीविका है वो महासागर या समुद्र पर ही निर्भर करती है। और साथ ही साथ ये भी है कि महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हर वर्ष उदय भाई विश्व पर जो कोई भी दिन होता है ना तो एक उद्देश्य लेकर आता है, एक थीम लेकर आता है। तो इस बार का जो विश्व महासागर दिवस है उस वर्ष का थीम है कि वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी कि आश्चर्य जो हमें जीवन देता है उसका संरक्षण। तो ये
1: देखे ही सेल बा, एक आश्चर्य तो बा है, यदि अरुआ समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए तो केवल एक विशाल जल
0: विश्व
1: राशि, एक विशाल जल राशि ओमे
0: बिल्कुल
1: तरंग, और वो
0: हाँ
1: तरंग के लगातार जे बा गतिमान तरंग, तो ये तो निश्चित रूप से आश्चर्य ही बा।
0: बिल्कुल
1: और सबसे आश्चर्य ये कि हमने के यहाँ जे दवाई हमने के बा, जैसे बहुत सारा दवाई
0: दवाई हाँ
1: वो जे में कैंसर भी बा, गठिया के भी दवा बा, अल्जाइमर जे बा, इस तरह की बीमारी सब काफ़ी गंभीर बीमारी बा, इस तरह के बीमारी की जे दवा खातिर जे स्रोत बा, जे हमने का जो नौकरा खातिर जे उपयोग करी ले समुद्री जीव और दूसर जे बा शैवाल और जैवीय पदार्थ के, तो ये सब जे बा समुद्र के माध्यम से ही हमने का मिलला। और इस आधार पर अभी 3 अरब से ज़्यादा आबादी समुद्र पर आधारित जे इस तरह के जे व्यवसाय या ओकरा के कहीं कि जे काम बा
0: काम
1: ओकरा से जुड़ करके लोग रोजगार भी ले रहल बा
0: सही
1: और लाभ भी अर्जित कर रहल बा, तो समझ ले कि कितना बड़ा लोग खातिर
0: खातिर ये है,
1: ये समुद्र हमनी के उपयोगी बा।
0: लेकिन इतना कुछ तो समुद्र से हम लोग ले रहे हैं, महासागर से ले रहे हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें उदय भाई, तो वर्तमान समय में महासागर अनेक चुनौतियों का सामना भी कर
1: यही
0: रहा
1: यही
0: है।
1: आज के दिन याद ही है करे।
0: हाँ, यही करना है कि प्लास्टिक प्रदूषण, तेल का रिसाव होना, जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ जो समुद्री जीवों का अत्यधिक शिकार होता है और जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसका विनाश करने पर कई खतरे बन रहे हैं। तो यदि हम

0: सभी समय रहते हुए इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो जो समुद्री जीवन है और हमारा मानव जीवन दोनों प्रभावित होंगे।
1: निश्चित
0: तो इसके लिए जरूरी है कि हम आज के दिन कम से कम आज ही की, क्योंकि आज विशेष दिन है, हम लोग विश्व महासागर दिवस मना रहे हैं, तो हम संकल्प लें कि हमें प्लास्टिक का उपयोग मतलब बिल्कुल ना के बराबर करें, और जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे समुद्र हैं, जो महासागर हैं, उसको स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे और अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जागरूक रहे। और क्योंकि ये हमारी जो प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, इसके बिना पृथ्वी में पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती उदय भाई, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि महासागरों की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके अमूल्य संसाधनों का लाभ उठा सके।
1: देखिए, दिवस हो गए होला, दिवस के मतलब होला कि यह सब चीजन के बारे में जो हमने का
0: सोच
1: अभी बात
0: विचार
1: कहनी,
0: करना।
1: यह बारे में लोग सोचे
0: सोचे
1: और सोच
0: सोचे
1: करके उकड़ा के अपना खातिर लाभप्रद मानत, उकड़ा संरक्षण संवर्धन के दिशा में आपन संकल्पना व्यक्त करे। तो यही खातिर दिवस ही मनावल जाला। तो आज के दिन हमने के जरूर चाहे कि जो भी हमने के श्रोता भाई लोग बा, हर आदमी के योगदान होला। जैसे चूंकि मानव सभ्यता के विकास में एक महासागर के एकांगी योगदान बा, तो वैसे ही हमने के भी दायित्व तो बन जाला कि ओकरा के हमने के संरक्षित करी।
0: और हमारा ये भी दायित्व है कि बातचीत के साथ साथ हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन भी करें और अपना भी। तो क्यों ना काजोल कुमारी से हम एक लोकगीत सुनते हैं।
1: सुने क्या?

0: बाजे सखी
1: बनवा में मुरलिया।
0: मुरलिया, बहुत सुंदर ये लोक भजन काजोल कुमारी से हम लोग सुन रहे थे। आगे भी इनसे हम लोग सुनते रहेंगे गीत, लेकिन उदय भाई अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: सुनिए।
2: के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। बुनियाद हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं। हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए नंबर, नंबर है 94318-99002, 94318-99002। और दूसरा नंबर है 1800121051, 1800121051, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं, आज हमने बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर एक बार चर्चा की थी और वायदा किया था कि अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल आएंगे तो हम फिर से इस पर जानकारियां दिलवाएंगे। ढेर सारे सवाल आए हैं इस विषय को लेकर, इस बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। आइए हम इस पर फिर से आपको जानकारी दिलवाते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर

0: सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत

0: स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, BSc कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
1: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये BSc कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये BSc कार्डियो वैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
0: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए जहां कार्डियक सर्जरी हो रही है। तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हां बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं BSc कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है BSc कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, या रोजगार है ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
0: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है BSc कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है, और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है, और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब 3 तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है BSc कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
0: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं, रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस है।

0: ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दीज काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना, उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
0: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं, वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
1: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
0: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं, अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
1: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें, हाँ, हमारे युवा साथी, उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी, विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने विस्तार से

0: कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। चलने से पहले हम नंबर बता दें 9431899002 9431899002। तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: हाँ तो उदय भाई, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, और इसी के साथ हमारा चौपाल कार्यक्रम संपन्न होता है। हम लोग थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे खेती गृहस्थी में।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: तो खेती गृहस्थी में हम सबसे पहले सुनेंगे उदय भाई आयोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: सुनेंगे
5: उड़ान, हौसलों की उड़ान, सपनों की उड़ान, उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
6: प्यारे श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। हम आज देखते हैं कि लोग खास तौर पे माता पिता आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपी चंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है, और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी। तो सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
7: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
6: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया, जो कि बहुत ही अजीब होता जा रहा है। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलटकर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
7: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका, पर आपको ये जानना होगा कि ये परेशानी हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। प्रियंका, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
6: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें, और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
7: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलटकर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं, और ये हमें बच्चों में नजर आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब, उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है, और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है।

0: है, उस बदलाव के का कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
1: मतलब ये नेचुरल है सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाएं या ठीक हो जाएं या इन चीजों से बाहर आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं, पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं, माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके, और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है, और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका हमारे श्रोताओं, एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं, उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है, और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और चूँकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं, और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है, और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही है आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी।

0: थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड़ ही न करें, बचपन से, जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा, और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा, डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को, पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और ये गलतियां बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की जरूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों, हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों, याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए। दोस्तों, जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे सारा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे, और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद

और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। सो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, बस अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनका आदर कीजिए, और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

0: उदय भाई, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और अब समय है कि हम अपने किसान भाइयों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बातचीत करें। वैसे तो अगर हम लोग खाने की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे जो किसान भाई है कृषि और पशुपालन के साथ साथ कई तरह के छोटे मोटे व्यवसाय भी करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन पर ही कुछ बातचीत कर ले। मछलियों के जो उन्नत किस्म होते हैं वो किस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं,
1: बन सकते हैं ना, बन रहल
0: बन गए हैं, मतलब
1: अब हमने का उत्पादन जितना बढ़ा लेनी अपने ही है कि अब हमनी का आत्मनिर्भरता से थोड़े ही पीछे बन। और ये प्रयास जो कि पहले रुआ पता बा कि हमनी के यहाँ बहुत मछली बाहर से आवे, आंध्र प्रदेश से, फिर बंगाल से हमनी के मछली आयात करी, लेकिन धीरे धीरे राज्य यह दिशा में बढ़ गई बा, और बढ़ल बा तो एकरा पीछे कारण बा कि हमनी का एकरा के वैज्ञानिक रूप से एकरा के वो रूप से कहनी कि जौना से कहनी बेहतर मछली का उत्पादन कर सके।
0: और भारत में तो मुख्य रूप से बहुत सारी उन्नत किस्में यहाँ पाई जाती है, जिसी कारण हमारा जो भारत है
1: देखिए लोकप्रिय है। किस्म तो जे बा हमने के यहाँ कुछ जे मीठा पानी के मछली बा, वो मछली जे बा उकर बाजार बहुत ज्यादा,
0: बिल्कुल
1: तो ठीक बात बा कि थोड़ा सा समय आगे पीछे होके, लेकिन जो ना मछली के बाजार होला, जैसे हमने के यहाँ रोहू हमनी का मुहे में बसल कहल जला कि जे खाए रोहू के मुंड सीधे जाए बैकुंठ तो मीठा पानी के मछली काफी प्रचलित मछली बा, वही तरह से कतला
0: है,
1: और वही तरह
0: भी हाँ कम समय में अच्छा वजन मतलब हो जाता है, मछलियों का वजन काफी होता है।
1: एक और बहुत सारा मछली बा आजकल तो मृगल आवेला, लेकिन जे सबसे अभी के समय में जो उपयोगी हमने के यहाँ मछली के जो उन्नत प्रजाति जब किस्म के जमना के कहल जा सके ना, वो में कार्प्स जेबरा,
0: हाँ,
1: सिल्वर कार्प्स, ग्रास कार्प्स, कॉमन कार्प्स, आई सब जेबा जे कार्प्स बा, ये सब जे बा ओकरा ज्यादे भोजन के जरूरत ऊपर से देवे के ना होला, ये सब जे बा वो जे तालाब या फिर जे भी जहाँ भी रौड जलीय क्षेत्र बा आहार बा, तो में जे ओकर भीतर में जे जलीय घास होला ओकरा अलावे रुआ यदि ओकरा में केला के थम, केला के पत्ता ये सब डाली तो खाओ के बढ़ जाला,
0: साथ ही साथ विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। और एक जो है व्यवसायिक तौर पर, ऐसे तो ये सारे मछली व्यवसायिक तौर पे काफी उन्नत किस्म है, जिसमें एक है पंगासिस, ये व्यवसायिक पंगासिस, इसके पालन में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसका वृद्धि दर जो होता है ना बहुत तेजी से, उसके अलावा है तिलापिया, ये कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली मछली होती है, और आधुनिक मत्स्य पालन में इसका महत्व बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी हम लोग, ये तो पालन की बात हुई है, लेकिन हम लोग जब खेती करते हैं, किसान भाई खेती करते हैं, तो अपने पौधों को बचाने के लिए, अपने अनाज को बचाने के लिए, ताकि उसमें कीट का प्रकोप ना हो, तो कई तरह के कीटनाशकों का भी इस्तेमाल

0: इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन कीटनाशकों का रखाव कैसे किया जाए ये भी जानना, ये भी बातचीत करना बहुत जरूरी है।
1: शुभभन देखिए एक चीज होला, कोई भी कीटनाशक बा तो ओकर दुष्प्रभाव तो हो, जैसे मान लियो कि कीट के मरता तो मानव शरीर भी बा, वही जीव आधारित बा, तो जो ओकरा में रसायन के उपयोग बा वो रसायन रोग खातिर भी हानिकारक हो सके। ऐसे पहल का प्रयास तो यही करें कि जे भी कीटनाशक रुग खरीदी वो कीटनाशक जे बा वो बढ़िया दुकान से खरीदी और बढ़िया कंपनी के खरीदी। बहुत सब जे स्थानीय स्तर पर जे कंपनी बारी सा तो रसायन कितना मात्रा में देवे के बा मात्रा संतुलन ना रहे, और यदि मात्रा संतुलन ना रहला तो वो मानव शरीर खातिर भी हानिकारक हो जाला। दूसर का चीज ही बा कि जब छिड़काव करी खेत में तो वह समय में पर्याप्त सावधानी बरते के चाहिए। मुंह तो जरूरी बांध ली, ओकरा बाद जे बा जब छिड़काव करी तो पूरा सावधान रही, अभी ना जे वही से हाथ में छू लेनी है, वही से आँख छुए लगनी, वही से नाक छुए लगनी, वही से आँखों छुए लगनी, तो ई जे बा ओकरा से परेशानी हो जाला। जब भी घोल तैयार करी तो घोल में सबसे पहले प्रयास ई करी कि पहले डाल दी जो रसायन रुआ डाले के बाद ऊपर से पानी डाली या हाथ से ओकरा के ना चलाई, ओकरा के जेबा लकड़ियों के प्रयोग करके और ओकरा से चलाई तो उ जेबा हमने का बेहतर ढंग से एकरा के यदि हमने का उपयोग करी तो लाभप्रद हो सकेला मानव शरीर पर रोग
0: की सावधानी ही बचाव है। तो अगर सावधानी से कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो मानव शरीर हम भी बचेंगे और हमारे जो पशु हैं वो भी बचेंगे। तो चलिए इसी बात पर हम लोग एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं काजल कुमारी से,
1: सुनाएं
0: झूमर।

0: उदय भाई सुन रहे थे काजोल कुमारी से हम लोग ये झूमर गीत। तो अब इन्हीं गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। तो अब चलने का समय हो चला है। तो नमस्कार उदय भाई।
1: नमस्ते शोमा बहन।

0: चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, बेटा ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
9: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
10: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
9: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
12: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है, और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बधाई।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी रामजी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन के 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे। देश भर से मिली शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का सपना साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण जी रामजी योजना को स्वीकृति दी गई। ये योजना आगामी 1 जुलाई से राज्य में लागू होगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रवि मौसम से राज्य में पुनः लागू करने की मंजूरी दी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत बिहार शरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम स्वीकृति भी दी गई। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।
3: नामांकन के अंतिम दिन आज प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विधानसभा परिसर में दिन भर नेताओं और समर्थकों की आवाजाही बनी रही। सत्तारूढ़ एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट के उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्म अभिनेता से नेता बने पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने भी पर्चा भरा, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल

0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश ने नामांकन दाखिल नहीं किया। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: लोक जनशक्ति पार्टी आर के उम्मीदवार अशरफ अंसारी ने नामांकन भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि वे पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
2: ये हमारे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी के संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास, उसका ये नतीजा है हम जैसे मामूली कार्यकर्ता के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी उन सभी लोगों के प्रयास और विश्वास पर खरे उतर सके।
1: पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि संगठन के हर सदस्य को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।
3: ये बड़ा दिन है, पार्टी ने अपने पुराने ईमानदार कार्यकर्ता को मौका देने का काम किया जो कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को मजबूती देने का काम करती है।
1: इधर जदयू उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने ऊपर भरोसा जताने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया।
4: पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी विश्वास पार्टी ने किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी दायित्व मुझे मिली है इसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊंगा। और मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना देखा उसे पूरा करूंगा।
1: पार्टी उम्मीदवार भारती मेहता ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलते हुए नारी सशक्तिकरण के प्रयास को और सुदृढ़ करेंगी।
5: आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत को धरातल पर उतारना, जिस तरह उन्होंने बेटियों को सशक्त किया है, वो किसी भी स्थिति में बिहार में आगे बढ़ता जाए, वो धारा चलती रहे, वो धारा आगे बढ़ती रहेगी। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवारों पे विश्वास किया है और सबको शुभकामना है।
1: इधर राजद से विधान परिषद सीट के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि पार्टी की संख्या बल भले कम हो, हम पार्टी के झंडे को नहीं झुकने देंगे।
6: इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो हमारे नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया है। राष्ट्रीय जनता दल का जो मेरा झंडा है, चाहे मेरी संख्या कितना भी हो सदन में, झुकने नहीं देंगे। और जिस कारण मुझे पुनः सदन में भेजा है, 100% मैं खरा उतरूंगा।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उन अटकलों को खारिज किया है जिसमें उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करने की बात कही गई थी।
1: नाराजगी का क्या सवाल, बाकी उसके लिए क्या है, फिर नहीं मिली मिलेगी।
2: अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है, बने रहेगा। सदन की सदस्यता जब आवश्यकता होगी हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में

0: इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक डॉ. संजीव चौरसिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना है। आकाशवाणी अपने आप में ये जन जन की आवाज और आगाज है। आकाशवाणी की जो प्रामाणिकता थी न्यूज के संदर्भ में, यानी कि हर लोगों की जुबा पे आकाशवाणी की ही आवाज की इंतजार रहती थी। 90 वर्ष विश्वास का वर्ष, एक अपने आगाज और आवाज का वर्ष। इस 90 वर्ष के लिए आकाशवाणी को इस यात्रा तय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है और गरीब कल्याण योजना पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन गई। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
4: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
1: पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देवमोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 4 पहिया वाहन और 1.25 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 228 लीटर बियर बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली।

0: स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन से 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरी, देश भर से मिली शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है, इसे प्रस्तुत कर रही हैं अंशु अवस्थी। पूर्वी चंपारण जिले में तीसरे चरण के सहयोग शिविर का आयोजन आगामी 16 जून को किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पदाधिकारियों को प्रखंड एवं पंचायत आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 तक जानकारी प्राप्त कर सकता है। डीएम ने कहा कि परिवाद दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन कर दिया जाएगा। इससे पूर्व जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। ईख विकास के उपनिदेशक द्वारा बीते दिनों एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अंतर्गत भुगतान की स्थिति, गन्ना सर्वे, गन्ना यंत्रीकरण, क्षेत्र विस्तार योजना तथा ईख मूल्य भुगतान की गहन समीक्षा की गयी। बैठक में परिक्षेत्र की चीनी मिलों HPCL सुगौली, HPCL लौरिया, मंझौलिया चीनी मिल, न्यू स्वदेशी चीनी मिल, नरकटियागंज, हरिनगर चीनी मिल और भारत चीनी मिल सिंगवलिया के महाप्रबंधक एवं संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मेगा कृषि ऋण जन संपर्क शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले भर से जीविका समूह की सदस्याओं एवं किसानों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा 2026 जीविका समूह की सदस्याओं के बीच 51 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इधर 10 जून को होने वाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अधिनायक लिपिक परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7896 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के स्वच्छ एवं निष्पक्ष संचालन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अब प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
7: पश्चिम चंपारण जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जिले के 3 प्रखंडों में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बेतिया सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर ही त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्धन किसान, मजदूर, महिलाओं एवं जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीते दिनों बगहा पुलिस जिला के रामनगर स्थित खटौरी गांव में एक निजी हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक यूनिट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत स्थापित की गई है, जिसका संचालन क्षेत्र के युवा उद्यमी रवि शंकर नाथ तिवारी द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यह परियोजना न केवल व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक पशुपालन एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगी। जिले

मखाना की खेती एवं मखाना व्यवसाय को लेकर किसानों के बीच उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनो के संदेश से प्रेरित होकर बैरिया निवासी युवा किसान रंजीत कुमार चौधरी ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी छोड़कर मखाना उत्पादन एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी अहम पहचान बनाई है। रंजीत कुमार चौधरी ने दरभंगा से मखाना व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत में वे दरभंगा से कच्चा मखाना लाकर बैरिया में उसका प्रोसेसिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और आज उनके द्वारा तैयार मखाना देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों तक भी भेजा जा रहा है। बगहा SSB 65वीं बटालियन के ग्राउंड में 227 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड का आयोजित किया गया। वहीं नरकटियागंज स्थित SSB के 44वीं बटालियन के ग्राउंड में 152 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। बगहा के परेड में IG ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू शामिल हुई, जबकि नरकटियागंज में IPS महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल

0: वहीं नरकटियागंज स्थित एसएसबी की 44वीं बटालियन के ग्राउंड में 152 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। बगहा के परेड में आईजी ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू शामिल हुई, जबकि नरकटियागंज में आईपीएस महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल निशांत कुमार उज्ज्वल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षुओं से अपने दायित्वों का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। बीते दिनों पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार सांसद चले गांव की ओर कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र में निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पुल और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं उठाई। जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए सांसद ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले की हलचल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गजल। कलाकार हैं हरिहरन।

0: अभी आप हरिहरन से एक गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: This is Akashwani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand,

0: सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है।
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
0: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2+FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा
1: जी
0: तो।
1: जी
0: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है। इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे, जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है,
1: जी
0: फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं, फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे,
1: जी
0: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में, जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3, यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं, आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा, 163%, यानी 163%, 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे, अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है।
1: जी
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए,

0: खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना, और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो
1: जी
0: इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, और खास करके हम बड़े एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में
1: हाँ
0: ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू बात होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहा है और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं वो गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा सा इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है? ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाहर लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा

0: योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारण बस रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फास्ट फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
2: आप कुछ
1: जरूरत के
2: ऐसे
1: अनुसार।
2: चैलेंजिंग

0: प्लेसेस हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायोइथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
0: ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात ये है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए,
1: जी
0: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओस करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओज को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं,

0: गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years. Can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
7: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
8: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
9: सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं हरिहरन।

0: अभी आप हरिहरन से गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश

0: के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवेक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट

0: उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जनभागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जनभागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: है और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंभा 5 लाख रुपए तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जे पी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफिदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2,00,000 रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था जिसकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत

0: कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: भारत ने मगरबी एशिया में ताज़ा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये ताज़ा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा तश्वीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुँचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खत्े में अमन इस्तेकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिज़ाइल हमले किए हैं जिसे मगरबी एशिया में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने भी ताज़ा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारतीय सफारतखाने ने यह सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफर के दस्तियाब वसाइल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनती पार्कों की तरक्की में तेजी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का आगाज किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनती इको निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज्म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुर के अवार्ड अदा किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने

0: मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई सी नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ से लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी
0: पूरी हो जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम जी, प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सभी मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन

0: में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी जगह फसल लेते हैं, तो एक दलहन फसल लेते हैं, तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है, तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो विदेशी मुद्रा बचती है। दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। और तीसरी बात है, जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं। और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है, और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है। और ये जितने भी मोटे अनाज हैं, ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं, और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा, तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है, यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं। और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार, उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है, जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा। तो जैसे आप बात कर रहे हैं, जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें, तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
2: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान है तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा। लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है,
1: कमी हो जाती
2: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी,
3: राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
3: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना,
2: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं, और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई। तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है, और इसकी कमी कमी बहुत ज्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा। तो
1: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर
2: बहुत जरूरी है,
1: किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
4: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल जो है अवशेष बचते हैं, इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग

0: कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा विल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
2: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार सर जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है, इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी वे सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती है ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही

0: है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। समय समय पर श्रोताओं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए। और सरकार ने इसके लिए योजना भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
0: देखो, सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का
1: जी
0: जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है, और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन,
1: जी
0: तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर निवास,
2: जैसा
1: आपकी।
2: कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर साहब मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा, और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का, जैसे कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्कार
1: जी। मेरा प्रश्न है,
0: जी।
1: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा था, पौधा बहुत हेल्दी

0: उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगी, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
2: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
3: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसाल का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
1: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
4: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी
4: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए और धरती कहे पुकार के, ये भी
1: जी,
4: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
4: जी जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं।

0: लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी कि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो, एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या है, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान के उनके माध्यम से मिलकर उनको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है दो रचना, पहली ताल झप ताल में और दूसरी ताल तीन ताल में निबद्ध है। राग श्याम कल्याण, तबले पर संगति है तालांजय ठाकुर की, सितार पर आशीष कुमार चटर्जी। तो लीजिए सुनिए।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रति आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साथी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका अद्वितीय है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, भारत की विविध बोलियों, लोक कलाओं, सांस्कृतिक संगीत, साहित्य को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में इसका योगदान अतुल्य है। इसने हमारी क्षेत्रीय पहचान को वैश्विक मंच दिया है। डिजिटल क्रांति के आधुनिक दौर में भी आकाशवाणी ने खुद को निरंतर प्रासंगिक बनाए रखा है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राष्ट्रभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी एट द रेट 90 के अंतर्गत सुनिए एक विशेष कार्यक्रम भेंट वार्ता। डॉक्टर रमेश प्रसाद सिन्हा से बातचीत कर रहे हैं रानू सिंह, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार और रूपेश कुमार रूप।
3: 8 जून 2026 को आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। एक तरफ जहां गौरवशाली इतिहास का दौर है, वहीं दूसरी तरफ नई तकनीकी युग में आकाशवाणी स्वयं को फिर से परिभाषित कर रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध से शुरू हुआ सफर आज भी अनवरत रूप से जारी है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक श्रोता से जिनके लिए आकाशवाणी एक जीवन साथी है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।

0: मेरा नाम डॉक्टर रमेश प्रसाद सिन्हा, पूर्व प्राध्यापक हिंदी विभाग APSM कॉलेज बड़ौनी। 2008 तक मैं सेवा में था, उसके बाद सेवानिवृत्त हूँ।
1: आप ये बताएं कि रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, क्या बचपन से ही जुड़ाव है? 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर किस तरह की यादें हैं आपकी?
0: मैं जिस रूप में आकाशवाणी से जुड़ा, वह भी एक स्मरणीय घटना बनकर रह गई है। आपको आश्चर्य होगा, मेरे गांव में सबसे पहला रेडियो खरीदा गया, जो हमारे ही मोहल्ले में एक संपन्न आदमी थे, विश्वनाथ बाबू, उनके घर गांव का पहला रेडियो आया। आकार में भी बड़ा था, उसकी साज सज्जा में मैंने देखा कि मकान की चौड़ाई में दो लंबे बांस गाड़े गए और दोनों बांसों को मिलाया गया एक बित्ता चौड़ा जाल से। तो हमको लगा, और उस समय के लोग थे, उन्होंने समझाया कि यह जो जाल है यही आवाज को पकड़ता है। अब जो तकनीकी बात हो, लेकिन देखने में यही लगा। और बहुत उत्साह से मैं उस समय प्री क्लास हुआ करता था, प्री और पार्ट वन, इंटर नहीं था उस समय, तो हम प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और शाम में हल्ला हुआ कि आज रेडियो से आवाज सुनाई जाएगी और उसमें प्रादेशिक समाचार सुनेगा आदमी जो उसके आसपास रहेगा। तो कौतूहल बस हम भी वहां चले गए, और ये बात कह रहा हूँ प्री यूनिवर्सिटी में था उस समय। हमारा जुड़ाव रेडियो से कैसे हुआ, एक संपन्न व्यक्ति के घर के बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर रेडियो सुनने का जो एक जोश खरोश था, उसी उत्साह उमंग में मैं वहाँ आड़ पर, खेत की आड़ पर खड़ा होकर प्रादेशिक सुना। ये 1962 की बात। उसके बाद पार्ट वन में जब मैं छात्र बना, तो उस समय भारत पर चीन का आक्रमण हुआ, और रोज शाम कौतूहलवश मैं उस मकान के समीप पहुंचता था और उत्साह से वहां जाता था कि कुछ नई बात सुनूंगा। लेकिन रेडियो पर बड़े ही मर्माहत स्वर में सुनाया जाता था कि मेरी सेना बहादुरी के साथ लड़ते हुए एक कदम पीछे हट गई, और यही मिलता जुलता समाचार प्रतिदिन शाम में सुनाया जाता था। मन भीतर से उदास हो जाता था और दुखी होता था, इसलिए एक ही तरह का स्वर बार बार सुनना पड़े, इसलिए कुछ दिन हम लोगों ने आकाशवाणी के समीप जाकर आकाशवाणी के स्वर को सुनना छोड़ दिया था। ये रेडियो के साथ, आकाशवाणी के साथ हमारा ये प्रारंभिक लगाव, और वह लगाव आकाशवाणी के प्रति जो हमारे मन में भाव अपनत्व का जगा, वो आज तक जगा हुआ है। और मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरे साथ आकाशवाणी का छोटा आकार वाला, जिसको आकाशवाणी के बाद कहा गया था ट्रांजिस्टर, तो वही ट्रांजिस्टर स्वरूप में आकाशवाणी मेरे पास रहती है और उसका मैं लाभ उठाता रहता हूँ।
1: धीरे धीरे तकनीक बदल रही है, आप इतने सालों से आकाशवाणी सुन रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे?
0: मेरी समझ में एक प्रयोग धर्मी विधा के रूप में आकाशवाणी अपने को स्थापित कर चुकी है। उसकी यही विशेषता उसको जीवंत भी रखे हुए है। नानाविध प्रयोग हुए, नानाविध आविष्कार हुए, आज के अंतरजाल के युग में भी आकाशवाणी सांस ले रही है, फल फूल रही है, कार्यक्रम प्रसारित कर रही है, यही उसकी सफलता का कारण है। आकाशवाणी को मैं तीन दृष्टि से पसंद करता हूँ, एक सूचना, दूसरा शिक्षा, तीसरा मनोरंजन। ये तीनों तत्व जब तक आकाशवाणी के साथ उपलब्ध रहेंगे, आकाशवाणी सब दिन जीवंत एक विधा बनकर खड़ी रहेगी, समाज का कल्याण करती रहेगी।
1: आप श्रोता के साथ साथ वार्ताकार, विशेषज्ञ और भी कई रूपों में आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं, इसको लेकर आप कैसा अनुभव करते हैं?
0: अभी तक मैंने आकाशवाणी के श्रोता के रूप में अपनी पहचान आपके सामने पेश किया, अब कार्यक्रम में भी मेरी सहभागिता रही है। जहाँ तक मुझे याद है, 11 और 15 कार्यक्रम के बीच हमारा आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारण हमारे कार्यक्रम का हुआ। चाहे वो दोनों तरह का कार्यक्रम था, या तो मेरे द्वारा बनाए गए कार्यक्रम थे या आकाशवाणी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम थे, वो दोनों तरह का कार्यक्रम मुझे याद है प्रसारण उसका हुआ। रिकॉर्डिंग के लिए पहले बुलाया जाता था और प्रसारण की तिथि बाद रखी जाती थी।

0: इसको अपनी आवाज को मैं अपने घर पर भी सुना करता था। एक तो हुआ ये, दूसरा बात की ओर संकेत करना, मैं अपना धर्म समझता हूँ कि मैं किस किस रूप में आकाशवाणी से जुड़ना चाहा। केवल दूसरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम का श्रोता बनकर ही मैं नहीं रह सका, बल्कि हमेशा यह उत्कंठा रहती थी कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भी मेरे नाम की घोषणा हो। तो इस क्रम में, इस पहल में भी मैंने एक बार सबसे पहले इच्छा हुई उद्घोषक बनूं। तो उद्घोषक के लिए जो निर्धारित प्रपत्र थे उसको मैंने भरा, उसका इंटरव्यू भी हुआ। उस समय मेरी नियुक्ति उस रूप में नहीं हो सकी, मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि यह खोज करता रहा कि किन किन रूपों में मैं आकाशवाणी के परिवार का सदस्य बन सकता। तो उसी क्रम में मेरी कुछ रचनाएं स्वीकृत होती थीं आकाशवाणी दरभंगा से, और उसे प्रसारण का अवसर भी मिलता था। मेरी अपनी अनुभूति है कि उस समय जो पारिश्रमिक के रूप में हमें राशि मिला करती थी चेक के रूप में, तो वह अपने आप में भरा पूरा लगता था। कभी कभी ऐसा हुआ कि उत्तर पुस्तिका की जांच के क्रम में केंद्रीय मूल्यांकन में परीक्षक बनकर दरभंगा में रहता था, और उसी बीच कभी कभी कार्यक्रम रिकॉर्डिंग का भी अवसर आ जाता था, तो मैं मूल्यांकन केंद्र से समय मांग कर मैं अपना आकाशवाणी में आता था, रिकॉर्डिंग 10-20 मिनट का जो होता था वो करके फिर मूल्यांकन केंद्र लौटता था। मतलब जो जुड़ाव होना चाहिए किसी न किसी सतह पर, तो उस सतह की तलाश मेरी रहती थी जिसमें मैं आसानी से आकाशवाणी से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ अपने को जोड़ सकूं, और ऐसा करने में मैं सफल हुआ। कई कार्यक्रम प्रसारित हुए, मुझे खुशी हुई, और साथ में इज्जतदार पारिश्रमिक पाकर मैं घर लौटा करता था। यह मेरी जीवन की एक अलग तरह की उपलब्धि है। कॉलेज सेवा में था वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस सांस्कृतिक केंद्र से जुड़ना कॉलेज से जुड़ने से कहीं अधिक मैं इस जुड़ाव को अधिक महत्व देता था, इसलिए वह चेष्टा कभी कुंद नहीं पड़ी, मंद नहीं पड़ी। बार बार मैं चेष्टा करता रहा कि बार बार उद्घोषणा में मेरे नाम उच्चरित हों, और बहुत खुशी होती थी जब अपने ही घर में बैठकर अपने ही कार्यक्रम को अपने ही आकाशवाणी सेट पर सुना करता था।
1: आज जब आकाशवाणी अपनी 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है, तो आकाशवाणी के योगदान को आप किस रूप में देखते हैं?
0: जहाँ तक आकाशवाणी का सवाल है, तो आकाशवाणी के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। यह अपने आप में मेरे जैसे श्रोता को स्पंदित कर देता है। मुझे विस्मय इस बात से है कि किसी भी संस्था का रजत जयंती वर्ष होता है, स्वर्ण जयंती वर्ष होता है, हीरक जयंती वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, लेकिन आकाशवाणी अपने 90 साल की उम्र को एक जश्न के रूप में, एक याद के रूप में 2026 के 8 जून को मनाने जा रही है। तो इसमें थोड़ा हमको विस्मय होता है कि अगला जो शतवार्षिकी समारोह मेरे मन में है वह होगा, या उसकी क्षतिपूर्ति 90 साल की उम्र में ही करके लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मेरी सलाह है, आकाशवाणी का पुराना श्रोता हूँ मैं, परामर्श यही दे सकता हूँ कि इस वर्ष 90 साल तक की गतिविधि की चर्चा हो रही है, लेकिन आगे 100 साल जब पूरा हो आकाशवाणी का, उसमें एक विराट आयोजन हो और उसमें सभी स्तर के श्रोता को इसमें सहभागिता का अवसर मिले।
1: आज संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, ऐसे में आने वाली पीढ़ी को आकाशवाणी से कैसे जोड़ा जाए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: मैंने कुछ ही देर पहले आपसे स्पष्ट कहा कि आकाशवाणी की वह कौन सी विशेषता है जो उसको हर युग में बनाए हुए चल रही है। वह 3 गुण है जिसका पालन वह अपने कार्यक्रमों में कर रही है। आकाशवाणी शिक्षा भी देती है, सूचना भी देती है और मनोरंजन भी करती है। अगर

ये तीनों कार्यक्रम होते रहे तो आने वाली पीढ़ी भी आज तक की पीढ़ी की तरह आकाशवाणी से जुड़ी रहेगी और अपना सहयोग भी करती रहेगी। आने वाली पीढ़ी की पूरी गारंटी है कि वह अपनी सेवा, अपना सरोकार आकाशवाणी से बनाकर चलेगी। साथ नहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी दिनचर्या में जगह परिवर्तित होती है तो उस परिवर्तित जगह में अपने को समायोजित करने के लिए मैं आकाशवाणी को साथ रखता हूँ कि जगह कोई हो, अगर आकाशवाणी मेरे साथ है तो मेरी दिनचर्या पूर्ण लगे।

आकाशवाणी एट द रेट 90 के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम भेंट वार्ता। डॉक्टर रमेश प्रसाद सिन्हा से बातचीत कर रही थी रानू सिंह, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार और रुपेश कुमार रूप। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कुमार शानू और अनु मलिक की आवाज में अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

अगला गीत हमने लिया है दिले नादान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। नक्शलालपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है खय्याम ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं रॉकी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इसके संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी।

0: श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।